आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Game to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodhrandiriki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
8: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में मां की जरूरत पड़ती है और तुम उसी मां से मेरे जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो, विवादों में पड़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानवता मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूं, कुरान की तालीम हूं, बाइबल की शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहब का आदर्श हूं। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर साईं बाबा हूं। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया मोह, पाप दोष, कष्ट, लोभ, अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूं, क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा, अल्लाह मालिक।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के
1: सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़। आपसे याचना, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ओलिविये बॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव जारी है। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया है कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि एक वीडियो और एक फोटो प्रसारित की जा रही है, जिसका उपयोग प्रतिनिधिमंडल के अनुसार यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविये बॉकुल्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया है या शख्स के मुद्दे से विश्वासघात किया है। हालांकि इस चरण पर ये आरोप केवल प्रतिनिधिमंडल के प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए दावे हैं। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर बाद 1:30 बजे उनके अपने कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दी थीं। हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की। MES यानी मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को पुनर्परीक्षा के बारे में पोस्ट द्वारा सूचित किया गया तथा मीडिया के जरिए भी। MES के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इन परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि उसकी परीक्षा प्रणाली की अखंडता बनी रहे और उसकी योग्यताओं को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में मान्यता मिलती रहे। पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। विदेश समाचारों में भारत के कई राज्यों में आज मॉनसून की अवधि दस्तक देने वाली है। 24 घंटों के अंदर अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी यूपी और महाराष्ट्र में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इन सभी राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज

0: सुबह धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी। कहीं कहीं पर बादलों के गरजने की भी संभावना है। दोपहर बाद ये बादल अन्य जगहों तक फैल जाएंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 और अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात दक्षिण पूर्वी इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। हवा तेज होगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पूर्व में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह सूर्योदय 6:39 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Rise and
2: shine. 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
0: तो चलिए श्रोताओ, 6:04 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। गुरुवार का दिन है आज। जून महीने की 4 तारीख साल है 2026। तो चलिए आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। वैसे एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र हम साथ मिलकर बिताने वाले हैं। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देंगे। श्रोताओं, बस हमारी यही कामना है कि आप सकारात्मक सोच के साथ जो है आज का दिन जो है खास बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के साथ।
4: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
5: नमस्कार। सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से मैं आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में, दिव्य दृष्टि के कार्यक्रम में, भगवान के इस 24 अवतारों के बारे में हम सुनेंगे। अभी अधिक मास चल रहा है, इस अधिक मास के अवसर पर भगवान के जो 24 अवतार है उनके बारे में हम सुनेंगे। तो भगवान के मुख्य अवतार 10 हुए, लेकिन उसके बाद भी कई सारे अवतार हुए। उस अवतारों के बारे में आज हम सब सुनेंगे। भगवान के 10 अवतार मुख्य है, लेकिन 24 अवतार है सब मिला करके। उसमें 23 अवतार हो चुके हैं और एक अवतार अभी बाकी है। तो भगवान के 24 अवतार है, उसमें से पहला अवतार हुआ भगवान का सनकादिक 4 कुमार के रूप में, जिनका जो है पुराणों के अनुसार उनका समय हुआ सृष्टि के प्रारंभ में, उनका जो है अवतार हुआ। और भगवान जो है अवतार लेते हैं, जन्म नहीं। हम बोलते हैं भगवान की स्तुति में, राम जी की स्तुति में हम कहते हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जो है प्रगट होते हैं, अवतार धारण करते हैं, जन्म नहीं लेते। तो प्रथम अवतार भगवान का हुआ सतयुग में 4 कुमारों के रूप में, और वो हुआ सृष्टि के प्रारंभ में। और वो 4 अवतार जो है सनक, सनंदन, सनात और सनत कुमार के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी ने उनके मन से उनको बनाया, इसलिए उसके मानस पुत्र हुए। और ये अवतार का कारण हुआ सृष्टि के अंदर में ब्रह्म ज्ञान के प्रसार और प्रसार के लिए। और उनकी विशेषता ये है अवतार की कि वो आजीवन बाल रूप रहे, कभी उसकी उम्र बढ़ी नहीं, और ब्रह्मचारी के रूप में उनका जो है अवतार हुआ। दूसरा

अवतार भी सतयुग के आरंभ में ही हुआ है, क्योंकि भगवान हर एक युग में आते हैं, लेकिन जो चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसमें चार युग जो है बार बार आते रहते और जाते रहते हैं। तो अलग अलग सतयुग में अलग अलग अवतार हुए। तो सतयुग के आरंभ में दूसरा अवतार भगवान का हुआ वराह अवतार। वराह अवतार के बारे में आपको बताऊं तो भगवान ने जो अवतार लिया उसमें भगवान का मुख जो है सुअर जैसा, यानी शुकर जैसा उनका मुख हुआ, और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को वध करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। पृथ्वी जब वो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था वो पृथ्वी को रसातल में जब छुपा दिया तो उस रसातल में से पृथ्वी को बाहर निकाली और इस पृथ्वी की रक्षा की, इसलिए भगवान ने दूसरा अवतार धारण किया वराह का। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ। नारद जी को आप सभी जब जानते हैं, वो भी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। उनका नाम देवर्षि है और त्रिलोक संचारी। नारद जी हो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा भगवान नारायण का नाम लेते रहते हैं। वही भगवान के अवतार है लेकिन नारायण का नाम भी लेते रहते हैं, और भक्ति मार्ग का प्रसार उन्होंने किया। उसके बाद भगवान का एक अवतार हुआ नर और नारायण के रूप में, वो भी सतयुग में ही हुआ। माता पिता उनके रहे धर्मदेव, और मूर्ति के रूप में जो है उनकी माता पिता हुए, और बद्रिकाश्रम में आज भी बद्रीनाथ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भगवान का मंदिर है। और वो अवतार हुआ तपस्या क्या होती है, तपस्या के बारे में बताने के लिए भगवान आज भी जो है तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में, जिसको हम बद्रीनाथ कहते हैं। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, और जो है दूसरे तपस्या करने के बाद दूसरे अवतार में जो है वही नर नारायण जो है अर्जुन और कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया। उसके बाद जो है पांचवा अवतार भगवान का कपिल अवतार हुआ। कपिल अवतार जो है सतयुग में हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति उनके माता पिता बने। गंगा सागर के पास में, भारत में जो गंगा सागर है वहाँ पर तट पर उनका जो है जन्म हुआ, अवतार हुआ। और कपिल अवतार लेकर के भगवान ने हम सभी को जो है सांख्य योग का, सांख्य दर्शन की स्थापना की, और हमको और उनकी माता देवहूति को उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद जो है भगवान का एक अवतार हुआ दत्तात्रेय अवतार। अत्रि ऋषि के यहाँ और अनुसुया माता के यहाँ पर भगवान ने अवतार धारण किया दत्तात्रेय के रूप में। त्रिमूर्ति का अंश है वो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवताओं का वो अंश हुए। भगवान के छह हाथ, तीन सर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में भगवान ने तीन सर के साथ में अवतार धारण किया। और उनका अवतार का कारण ये था कि हम सभी को उन्होंने योग का उपदेश किया। आज हम लोग योग कर रहे, साधना कर रहे, ध्यान कर रहे, वो योग का उपदेश करने के लिए भगवान ने दत्तात्रेय का अवतार धारण किया। और भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक मधुमक्खी से लेकर के वैश्या तक उन्होंने जो है अलग अलग 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बना करके हम सभी को जो है गुरु गीता का या तो अवधूत गीता का उपदेश किया। और कहते हैं कि योग और तंत्र विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। उसके बाद भगवान का अवतार हुआ यज्ञ नारायण अवतार। यज्ञ नारायण अवतार भी जो है स्वयंभू मनवंतर के अंदर में हुआ सतयुग में। उनके माता पिता रहे प्रजापति, रुचि उनके पिता रहे, और आकुति उनकी जो है माता रही। उनकी पत्नी का नाम हुआ दक्षिणा। आज भी हम जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ ही भगवान का अवतार है, जिसको हम यज्ञ अवतार कहते हैं, और उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। भगवान को हम जो दक्षिणा चढ़ाते हैं वो उनकी पत्नी है। तो यज्ञ और दक्षिणा के यज्ञ अवतार हुआ और उनकी पत्नी के रूप में दक्षिणा हुई। स्वयंभू मनु के समय में इंद्र का पद जो है वहाँ पर खाली था, कोई इंद्र नहीं थे। तो स्वयंभू मनु के उस समय में इंद्र के रूप में जो है यज्ञ अवतार के रूप में भगवान ने राज्य किया और यज्ञों की व्यवस्था की। इस प्रकार अलग अलग कार्य उन्होंने किए। उसके बाद आठवां अवतार भगवान का हुआ ऋषभदेव के रूप में। नाभिराज और मेरु देवी के यहाँ पर उन्होंने अवतार धारण किया। उनका जन्म स्थल हुआ अयोध्या। अयोध्या के अंदर में भगवान राम जी का भी अवतार हुआ लेकिन साथ में ऋषभदेव जी का भी अवतार हुआ। उनकी पत्नी बनी जयंती, और ऋषभदेव के ही कुल में भरत नाम के राजा हुए, जिसके नाम से आज भी हम भारत को जानते हैं, जिसको हम कहते हैं भारत। तो भारत जो है भरत राजा के नाम से उनका

नाम पड़ा और वो भरत राजा के ही पूर्वज थे जिसको हम जो है ऋषभ देव जी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद ऋषभ देव जी के बाद में जो है भगवान ने एक और अवतार धारण किया, भगवान का नाम हुआ पृथु के रूप में, पृथु अवतार धारण किया, वेन के शरीर को मंथन किया, वेन दुष्ट राजा।

0: पृथ्वी जो है रसों के बिना हो गई थी, कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हो रहा था, तब उस पृथ्वी के ऊपर अन्न नहीं बनता था, उस अन्न को धान को उगाने के लिए भगवान ने अवतार किया और फिर से पृथ्वी को अपनी जो है रस कस औषधि आदि सब उस राजा ने पृथु के रूप में भगवान ने दी। उसके बाद भगवान का हुआ मत्स्य अवतार मछली के रूप में, सत्य और त्रेता युग के दोनों के बीच की संधि जो है उस समय उन्होंने अवतार धारण किया। छोटी सी मछली से लेकर विशाल मछली तक उन्होंने ऐसा अवतार धारण किया सत्यव्रत यानी वैवस्वत मनु के समय में। और इस पृथ्वी के ऊपर प्रलय जब आने वाला था तो प्रलय के समय में सप्त ऋषियों की रक्षा की और हमारे वेद आदि की रक्षा की भगवान ने अवतार धारण करके। उसके बाद भगवान का एक अवतार हुआ कूर्म अवतार, कूर्म यानी कछुआ। जब क्षीर सागर को जब समुद्र मंथन किया गया, देवता और दानवों ने मिलकर के अमृत को निकालने के लिए जब समुद्र मंथन किया, तब भगवान ने उस समुद्र मंथन के अंदर में बीच में जो मंदराचल नाम का पर्वत था उसको स्थिर रखने के लिए कछुए का अवतार धारण किया। तो कुर्म के रूप में जो भगवान ने अवतार धारण किया इसलिए उनका नाम पड़ा कच्छप अवतार। उसके बाद भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ। जब वो समुद्र मंथन चल रहा था उसमें अलग अलग प्रकार के रत्न निकले, कथा आप सभी को पता है। उसमें से अमृत का कलश निकला, जहर निकला, उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा निकला, लक्ष्मी जी, शंख आदि 14 प्रकार के रत्न निकले। उसमें से एक भगवान ने समुद्र मंथन के अंदर में से एक अवतार धारण किया, उनका नाम पड़ा धन्वंतरी। उनके नाम से हम धनतेरस की तिथि दिवाली से एक दो दिन पहले हम जो है मनाते हैं। तो धन्वंतरी अवतार हुए, कहते कि वो देवताओं के डॉक्टर कहलाए, आयुर्वेद के देवता, चिकित्सा शास्त्र जिसको कहते हैं, उनकी रचना की और देवताओं को अमृत का कलश दिया। उनके हाथ में जो था अमृत का कलश था, उसी अमृत कलश को बांटने के लिए भगवान का एक और अवतार हुआ मोहिनी अवतार, यानी भगवान नारायण ने खुद मोहिनी यानी एक सुंदर सी स्त्री का रूप लिया और देवतियों को मोहित करके अमृत को वापस लिया और देवताओं को अमृत दिया। उसके बाद जो है भगवान का एक अवतार हुआ, उनका नाम है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार की आप कथा जानते हैं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्तंभ में से भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। उसके बाद भगवान का अवतार हुआ वामन अवतार। कश्यप ऋषि और अदिति के यहाँ पर भगवान वामन यानी एक छोटे से ब्राह्मण बच्चे का रूप लिया और ब्राह्मण बच्चे का रूप लेकर के बलि राजा के पास में 3 पैर पृथ्वी के बदले में आकाश, पृथ्वी और खुद बलि राजा के ऊपर पैर रख करके उनको पाताल लोक का राजा बनाया और उनको वरदान दिया। उसके बाद जो है परशुराम अवतार हुआ। जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता के यहाँ पर भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और इस पृथ्वी को जो है 21 बार न क्षत्रिय यानी बिना क्षत्रियों की कर दी। उसके बाद भगवान ने एक और अवतार लिया उसी समय में जिसको बोलते हैं हम राम अवतार। सभी अवतार जो है अंशा अवतार है लेकिन 2 अवतार जो है पूर्ण अवतार है, उसमें एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार, वो पूर्ण अवतार है। तो भगवान ने राम अवतार धारण किया। राम जी के बारे में आप सभी को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग राम जी के बारे में जानते हैं। दशरथ राजा के यहाँ पर राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। उसके बाद भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार धारण किया। एक अवतार हुआ वेद व्यास, त्रेता युग के अंत में द्वापर युग की शुरुआत में पराशर ऋषि और सत्यवती धीवर कन्या के यहाँ पर, सत्यवती के यहाँ पर भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार धारण किया। उनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। तो भगवान के अलग अलग अवतार हुए। तो यहीं पे हम जो है अवतारों की चर्चा जो है समाप्त करते हैं। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास आप सभी को फिर से कहता हूँ कि अधिक मास में भगवान के स्मरण कीजिए, भगवान का जप कीजिए और भगवान के अवतारों का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार से आज की ये दिव्य चर्चा जो है दिव्य दृष्टि को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय सियाराम।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

में आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले वाकवा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है गांव मुंबई नंबर 1, 2, 3 et 4, देवयागू रोड, रामपा रोड, मार्सेलमा इडू, पेरिये रोड, रेलवे रोड, लामारी रोड, कारोसोंज, मार्सेलमा गालियो, नाटू लेन, लालू लेन, फ्रीलैंड लेन, बक्सू लेन, कॉन्टिक फिन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 7 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर है वाकवा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है शमैचिलापेन, गुतली बेटो के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 7 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है हाईलैंड्स के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसलमा गाइमिया, आवाडाली लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 7 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच, वुटन के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है टुको लेन, ए पास रामजान, एनफील्ड रोड और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 7 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच, और अंत में है बिगारा और ले काजेन क्यूपिप के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है स्टीवेंसन लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 5 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रख रहे हैं।

इस हिंदुस्तानी सभा को जारी रखते हुए श्रोताओं, चलिए हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। सत्या प्रकाश के संदर्भ में आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम, हम आपको इशारा करें कि कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं। आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन सकेंगे। समाचारों के बाद वापस मिलेंगे सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

नमस्ते रुद्रमन्यव उतु तिषवे नमः बाहुभ्याम् उतते नमः ओम शांति शांति शांति ही। सत्यार्थ प्रकाश प्रसार मास्क उपलक्ष पर प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि देव दयानंद जी ने सत्य के अर्थों पर प्रकाश डालने के लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। वह चाहते थे कि सभी लोग सत्य को जानें। स्वामी जी एक आप्त पुरुष थे। आप्त पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें और दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दें। वेद का भी यह कहना है, विप्रारितस्य वाहसा, विद्वान पुरुष कभी भी सत्य को नहीं छुपाता।

वो तो हमेशा सत्य का ही प्रचार करता है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका में महर्षि जी लिखते हैं, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्वामी जी सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखे, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि सत्य है क्या। सत्य का अर्थ अत्यंत आध्यात्मिक एवं विस्तृत है। ग्रंथ के प्रथम समुलास में स्वामी जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्वर का एक नाम सत्य लिखा है। सब पदार्थों में विद्यमान होने से परमात्मा का नाम सत्य है। व्यास जी ने सत्य का अर्थ इस प्रकार किया है, सत्यम यथार्थे वाङ्मनसे यथा दृष्टम तथा अनुमितम तथा श्रुतम तथा वाङ्मनश्चेति। जो पदार्थ जैसा हो उसके संबंध में वैसा ही वाणी से बोलना और मन से मानना सत्य है। सत्य निर्ब्रह्म होता है। स्वामी जी का मानना है कि जीवात्मा स्वभाव से ही सत्य में प्रीति करती है, परंतु अपने प्रयोजन व स्वार्थ की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों के कारण वह सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। सत्य के मार्ग पर चलना प्रत्येक मनुष्य का धर्म होता है। सत्येन धर्मः वर्धते, सत्य बोलने से धर्म का विस्तार होता है। यह तो सनातन धर्म है। सत्य पूर्ण स्वरूप है और झूठ पाप स्वरूप है। मोक्ष प्राप्त करने का पहला सोपान सत्य ही है। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुलास में मुक्ति विषय के अंतर्गत स्वामी जी लिखते हैं कि जो सत्य को मानकर चलता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। अविद्या, झूठ आदि से जीवात्मा बंधन में फंसता है। तैतीय उपनिषद का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार लिखता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान एवं परमात्मा को जानता है वह उस ब्रह्म में स्थित होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। कहा भी गया है, सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्य स्वर्ग अर्थात मोक्ष की सीढ़ी है। न मृत्यु सेनामायन्ति जातु कश्चित् प्रबाधते, ऋते सत्यम असत्याज्यम सत्ये यामृतमाश्रितम्। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आती हुई मृत्यु रूपी दुख की सेना को कभी सामना नहीं कर सकता, अतः असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही निहित है। इस कारण वेद उपदेश देता है, ऋतस्य पंथा मनु, हम सभी सत्य के मार्ग पर चलें। ऋतधीतय आगत सत्य धर्मणो अग्नेः पिबत जिह्वया। हे मनुष्य, आप लोग सत्य धर्म को धारण करो, इससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। ऋतेन ऋता वृधौ ऋतस्पृशा। अतः हम सत्य स्वरूप ब्रह्म के नियमों में बंधते हुए ब्रह्म ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते रहें। सत्य मार्ग पर चल करके ही हम अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। अतः महर्षि दयानंद जी का यही उद्देश्य था कि हम सभी लोग सत्य को जानें। सत्य जानने के बाद ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। पूरा जून महीना सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित हुआ है। हम इस महान ग्रंथ का अध्ययन करें व विद्वानों द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पर आख्यान सुने, परंतु इस ग्रंथ का अध्ययन व श्रवण पक्षपात रहित होकर के करनी चाहिए, तब भी सच्चाई सामने आती है। जब तक हम अपने जीवन में सत्य

0: सत्य को नहीं अपनाते हैं तब तक हम अविद्या में पड़े रहते हैं और अविद्या से हम बंधन में पड़े रहते हैं। सत्याप्रकाश ग्रंथ में विद्यमान अनेक विषयों का हम निष्पक्ष होकर के अध्ययन करें, तभी हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के 6:30 बजे हैं। सभी सुनने वालों को नमस्कार, स्वागत इस बुलेटिन में। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। ओलिविए बॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव, एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले एक समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। करीब 450 मॉर्शन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। पेपर लीक होने की खबर के बाद ये फैसला लिया गया। भरी हुई वेटिंग रूम, दबाव में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार नर्स की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक बनी हुई है। विदेश की खबरों में, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। ओलिविए बॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव है। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले एक समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई। बयान में यह भी कहा गया कि एक वीडियो और एक फोटो प्रसारित की जा रही हैं जिनका उपयोग प्रतिनिधिमंडल के अनुसार यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविए बॉकुल्ट शगुस मुद्दे के खिलाफ हैं। हालांकि इस चरण पर ये आरोप केवल प्रतिनिधिमंडल की प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए दावे हैं। सारा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: ओलिविए बॉकुल्ट के डेलीगेशन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार लंदन में हुई यह मिशन केवल कूटनीतिक ढांचे तक सीमित नहीं रही। बयान में कहा गया है कि डेलीगेशन के कुछ सदस्यों का कथित रूप से पीछा किया गया, उन्हें फिल्माया गया और वेस्टमिंस्टर के ब्रिटिश संसद के गलियारों में एक विरोधी दल का सामना उन्हें करना पड़ा। डेलीगेशन ने एक वीडियो और एक तस्वीर के उपयोग पर भी आपत्ति जताई है जिसमें ब्रिटिश लेबर सांसद एलेक्स ओबेल के साथ एक मुलाकात दिखाई गई है जो शगुस मुद्दे पर गठित संसदीय समूह के उपाध्यक्ष हैं। डेलीगेशन के अनुसार इन तस्वीरों का उपयोग विरोधी पक्ष द्वारा ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविए बॉकुल्ट ने शगुस मुद्दे पर समझौता कर लिया है या अपने रुख से पीछे हट गए हैं। हालांकि ओलिविए बॉकुल्ट और उनके समर्थकों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात करना एक सामान्य और लोकतांत्रिक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस विवाद ने शगुस मुद्दे को लेकर जारी तनाव को एक बार फिर सामने ला दिया है जिसमें समुदाय के भीतर मतभेद भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
0: करीब 450 मॉर्शन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर बाद 1:30 बजे उनके अपनी कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दी थीं। हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3

0: प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इस पुनर्परीक्षा के बारे में पोस्ट और मीडिया के जरिए सूचित किया गया है। एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख अशोक गुलजर को सुनते हैं।
1: Malheureusement, Cambridge,
2: दुख की बात है कि कैम्ब्रिज ने हमें इस लीकेज के बारे में सूचित किया है, जिसकी तहकीकात के वास्ते कैम्ब्रिज जरूरी कदम उठा रहा है तथा ये पता लगाया जा सके कि ये लीकेज कहां और किस देश में हुआ, और इसके आधार पर सख्त दंड भी निर्धारित है। गौरतलब है कि कैम्ब्रिज के सख्त प्रोटोकॉल हैं और वह विश्व भर में अपनी सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर रहा है, और यदि ये निर्णय लिया जा रहा है तो ये भली भांति उन्हें ज्ञात है और ये आसान नहीं है, विशेषकर यदि एक छात्र को पुनः परीक्षा देनी होगी। वे ये भी अच्छी तरह समझते हैं, पर दुख की बात है कि एक रिप्लेसमेंट पेपर निकाला जाएगा जिससे प्राप्त क्वालिफिकेशन को दुनिया भर में मान्यता मिले और सभी यूनिवर्सिटियां भी इसको मान्यता दें।
0: और पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इस प्रश्न पत्र के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में लगातार अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस संदर्भ में आज लर्न AI स्कूल प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को तकनीक के माध्यम से नवीन समाधान विकसित करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के अंत में ग्रेड 10 की कैटेगरी में सुडनाक SSS ने अपने स्मार्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट के साथ जीत हासिल की, जबकि ग्रेड 12 की कैटेगरी में कल लंदन कॉलेज ने अपनी पब्लिक सर्विस एफिशिएंसी परियोजना के साथ विशेष पहचान बनाई। ये प्रतियोगिता कल आयोजित की गई। भरी हुई वेटिंग रूम्स, दबाव में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ और कभी कभी ऐसे मरीज जो खफा और नाराज हैं, ये दृश्य अब आम है। नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार नर्स की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक बनी हुई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम नाओजादेक का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल को प्भावित करती है। उनको सुनते हैं।
2: सभी इलाकों में ट्रोमा यूनिट की स्थापना करने की बात की जा रही है, पर ये है क्या? मतलब ये है कि एक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट को हटाकर उसको ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। सभी स्टाफ वही हैं, प्रणाली भी वही है, और विज्ञापन में बताया जा रहा है कि इसको एक वन स्टॉप शॉप बनाया जा रहा है। जैसे जैसे ही मरीज वहां पर आएंगे, उन्हें एक ही जगह पर सभी सेवाएं प्राप्त होंगी तथा विशेषज्ञ भी उन्हें देखेंगे, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। अस्पतालों में विशेषज्ञ और नर्सेज की कमी है। कैजुअल्टी में जहां 10 नर्स होने चाहिए, वहां केवल 2 इधर उधर भागते हुए काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रणाली की स्थिति इतनी दयनीय देखकर सब मायूस हो रहे हैं। मेडिकल स्टाफ पर बहुत दबाव बना हुआ है, सेवाएं धीमी हो रही हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करने की मांग करते हैं।
0: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन द्वारा कल एक प्रेस सम्मेलन लगाया गया, जिस दौरान सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजा तथा अयोध्या रामायण प्रतियोगिता और अन्य जानकारियां दी गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में। सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के लिए भूमि पूजा 21 जून को होगी। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इसका ऐलान किया गया।
3: 21 जून को यानी कि सनातन वाटिका में, यहां पर सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के शुभ आरंभ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक भूमि पूजा का आयोजन किया है। सवेरे 9:30 यहाँ पर भूमि पूजा होगी।
0: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है।
3: पहली जो है रामायण गायन प्रतियोगिता, जो मॉडर्न वर्जन में होगी, और ये हमारे जो नौजवान हैं जो कॉलेज में हैं उन लोगों के लिए है। दूसरी पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल नॉर्मल वर्जन और ट्रेडिशनल चौताल वर्जन, तीसरी मॉडर्न क्लासिकल वर्जन पर होगी। चौथा जो है गीत गवाय प्रतियोगिता, पांचवी है इलोकेशन कंपटीशन कहते हैं।

0: चौथा है चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी जो हम कहते हैं क्विज कंपटीशन, इसमें भी ये यंगस्टर्स के लिए हैं।
1: मॉरिशस के लिए अगले हिंदू कैलेंडर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा गंगातलाव स्पिरिचुअल सेंचुरी को लेकर कुछ निर्देशों पर भी फेडरेशन द्वारा काम किया जा रहा है। विदेश की खबरों में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। फरवरी में शुरू ही इस युद्ध के खिलाफ खड़े होने की तीन नाकामयाब कोशिशें की जा चुकी हैं। इस बार आखिरकार 208 के मुकाबले 215 वोटों के साथ ये बिल पारित हो पा रहा है, फिर भी इसके अमल में लाए जाने पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिराएंगे, कहीं कहीं पर बादलों के गरजने की भी संभावना है और रात को भी दक्षिण पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो पर मौसम बरसाती रहेगा। प्रवाहरेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:39 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग तथा तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती रामचंद पैराशी नाम पैम और जो रेखा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को उनके मकान उनके बेटे रजनीश और अविनाश रामचरण के मकान नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन फ्राइडे एट 1:30 PM। La rue pavée d'amour, Coromandel, 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती श्वेता देवी रामदेन पैराशी नाम देवी और जो बाबून गीता के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान लाहुईपा वेदामो कोहोमोडेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। कमलन लेन नोवेल फ्रांस में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद ज्योत जो परमानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान कमलन लेन नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोसबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। ब्रांच रोड पिचिव्याजे में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री महादुआ जो दादी सुकून के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके बेटे देवराज महादुआ के मकान ब्रांच रोड पिचिव्याजे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। गंगू लेन लिस्कालिये में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती हरिप्रसाद श्रीमती लीला

अवती हरि प्रसाद पैदाशी नाम दुखित और जो सुया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रामेश्वर हरि प्रसाद के मकान गंगू लेन लिस्कारी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। रॉ रोड रोसबेल में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल जो विकास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान रॉयल रोड रोसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिजानी रोसबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। कालीमाई रोड ब्रामस्थान में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम दत्त बिहारी की मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 9 बजे उनके बेटे कोमल बिहारी के मकान कालीमाई रोड ब्रामस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। फर्स्ट रोड पोंजुसाक में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखराम गोबिन जो विद्यानंद मौशंकोको के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे रविन्द्र सत्यराम गोबिन के मकान फर्स्ट रोड फोंजुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि दे जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। कौलीलाश मैघोनिये में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवी रेणुका तायलामय पैदाशी नाम लक्ष्मण और जो रेणु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पिता रामनूप लक्ष्मण के मकान कौलीला शुमय घोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंप गोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। श्री शंभुनाथ रोड कास्टेल फिनिक्स में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती स्वांति जगतपाल पैदाशी नाम सियोनत और जो फिन के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे कृष्ण जगतपाल के मकान श्री शंभुनाथ रोड कास्टेल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा क्यूपीपी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। यूके में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज जीबन जो अनिल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले टैगोर रोड फोंजुसाक रहा करते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 3 बजे यूके के समय अनुसार यूके में उठाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन फ्राइडे एट 3 PM इन यूके। काना एवेन्यू काटकोको में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड के श्री हरि प्रसाद रामहित जो महाश तायुय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके बेटे जयदत्त रामहित के मकान काना एवेन्यू काटकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। गांधी रोड एन एस फ्लोरेंस बेलिया में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पैदाशी नाम जहाजिया और जो बबीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके पति विनोद श्याम के मकान गांधी रोड एनिस लोहोबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। हुईगालिया कास्टेल में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री उत्तम दत्त सामनाथ जो प्रीतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है।
अर्थी दिन के 11 बजे उनके मकान हुईगा लियाको स्टाइल से उठाकर

अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रारोद कौची मिलितिया में पचहत्तर साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदत्त सिंह सांधुराम जो जग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बायरन कॉलेज तथा बॉम्बू SSS में पूर्व एजुकेटर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके मकान रारोद कौची मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। रागुलेन लोशे त्यागूज में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री राजमन रागु जो राजमन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके बेटे परमानंद रागु के मकान रागुलेन लोशे त्यागूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्तिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: गुरुवार 4 जून दोपहर 1:30 बजे फ्लोरियाल के कैलाशनाथ मंदिर में श्री सनातन धर्मिया ब्राह्मण महासभा द्वारा सनातन धर्म पर्व कैलेंडर कमिटी 2026 लगाई जा रही है। गुरुवार 4 जून को शाम 5 बजे रॉयल रोड बॉशेरी में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बॉशेरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 3 द्वारा यज्ञ और सत्संग का आयोजन किया जा रहा है।

Nous travaillons l'avenir de la Ministry of Labour and Industrial Relations साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जात बा. सेक्टर एग्रीकल्चर GPS एग्रो लिमिटेड जुन सुबह लेन पालमा का ट्रबोन में है खोजता एगो मेल ड्राइवर मर्चेंडाइजर जिनका एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बा. एगो फीमेल अकाउंट्स क्लर्क जे SC ले पढ़ ले बा और दूगो एग्रीकल्चरल वर्कर. Application Khadin call career 425N00N per Yasakan Sit 89-69-80 per RGBG ki akhri tarikh 30 June 2026. Sector Poultry and Mixed Farming Island Eggs Limited Jun Il Dambre Rivière du Rempart Meha Kujata Dugo Female Egg Collecting Worker JCPU Le Parleba Application Khadin Ford Career 57-04-28-98 per RGBG ki akhri tarikh 20 June 2026. सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सफर्न कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड घोंबा में है खोजता तीन गो मेल ग्रेड टू कैबिनेट मेकर जिनका दो बरिस का एक्सपीरियंस बा. तीन गो मेल ग्रेड टू अप होल्ड स्टीयर जेकर दो बरिस का एक्सपीरियंस है. एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 58-67-49-91 पर. अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 15 June 2026. सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ए टू जेड यूनिफॉर्म्स लिमिटेड जुन लैंडस्कोप बिल्डिंग 71 गुडलैंड्स पे है खोजता नौ गो मेल स्विंग मशीन ऑपरेटर जिनका तीन बरिस के एक्सपीरियंस बा. एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 52-55-90-07-08 पर. अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 12 June 2026. सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग लेकोफोर लिमिटेड जुन 71 रोड कॉन्फुको फिनिक्स में है खोजत वंजा 10 गो मेल कैबिनेट मेकर और एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 69-69-2 NN पर. अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 31 मई 2026. सेक्टर 10 सर्विसेज एस धनु 10 सर्विसेज कंपनी लिमिटेड जोन स्कूल लेन कोंदिमास पावे में है खोजता चार गो मेल टेंट इरेक्टर और इनका चाहना एक बरिस के कम से कम एक्सपीरियंस रहे कि आपने कास्टों का थीन फोर करिए

मुलाकात पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 13 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड कौन दिमास पावी में है खोजा थवंजा 5 गो मेल इलेक्ट्रिशियन जिनका 1 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 5 गो मेल प्लम्बर जिनका 1 बार स्किल एक्सपीरियंस बा आपकी काशो खातिन फोन करिए 4600 पर या तो फिर कभी भी जाके आप जाइए सेफ्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड रॉयल रोड कौन दिमास पावे। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 13 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन दाना लक्ष्मी एंटरप्राइज लिमिटेड जो नेहरू नगर आरजी फ्लैक में है खुजतवंजा 14 गो मेल मेसन जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 5926 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 18 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन के एस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो 11 एडगर गैलिट स्ट्रीट पोर्ट लुइस में है खोजतवंजा 1 गो मेल लॉरी ड्राइवर जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बा और साथ में एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 2 14 23 95 या 57 90 98 48 या 52 55 78 20 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन सत्यानाम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जुन ले ग्रां ब्रांच रोड घोंबा में है खोजा था 4 गो मेल मेसन 3 गो मेल कॉपेंटर 3 गो मेल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हेल्पर और एप्लीकेशन खातिन आप लोग से बचा फोन करें 5700 4 57 99 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 जून 2026। सेक्टर प्रिंटिंग मास्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिमिटेड जुन रॉयल रोड लाहौजा में है खोजा था 4 गो मेल ऑफसेट मशीन ऑपरेटर जे एस सी पढ़ लेबा साथ में एन से थ्वा कर लेबा इन प्लेट मेकिंग एंड मशीन प्रिंटिंग साथ में 3 बरिस के चहला एक्सपीरियंस रहेगी। एप्लीकेशन खातिन अपन सीवी विदा करिया बाय मेल mpstationery@yahoo.com। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 13 जून 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड टॉप सेरामिका लिमिटेड जोन बुले रूज फ्लैक में है खोजता 3 गो फीमेल सेल्स पर्सन एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 5835 0011 पर या 4135 5511 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 14 जून 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड अकील कोल्ड स्टोरेज जो रॉयल रोड रविया जुगाँव पाँव में है खोजतवंजा 5 गो मेल कोल्ड रूम अटेंडेंट जे एस ले पढ़ लेबा 3 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 5839 9 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड जीस लिमिटेड जो हुदला सालत गांव में है खोजता 80 केशियर जे फोम साइकिल पढ़ लेबा 80 शेल्फ वर्कर जे फॉर्म 2 या फॉर्म 3 ले पहर लेबा एप्लीकेशन खातिन अपन सीवी विदा करिए vashishta.gokul@superu.mu पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 30 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट शे चीनो रेस्टोरेंट जोन रॉयल रोड थोड़ो दूस में है खोजतवंजा 2 गो मेल किचन हेल्पर एप्लीकेशन खातिन आप कभी भी सक बजाई रेस्टोरेंट शे चीनो जो उनकी रॉयल रोड थोड़ो दूस में है या तो फिर सकबा फोन करें 4802769 या 5743 5521 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 11 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट फूड फ्लो लिमिटेड जो सुपेयर रॉयल रोड गुडलैंड में है खोजतवंजा 3 गो फास्ट फूड ऑपरेटर जिनका कम से कम 6 महीने के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए 5217 9 61 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 12 जून 2026। सेक्टर एजुकेशन नानीज प्री प्राइमरी स्कूल जोन बिजादर स्ट्रीट रविया जुगाँव पाँव में है खोजता एगो फीमेल प्री प्राइमरी टीचर जे एस सी ले पढ़ लेबा साथ में थोड़ा 5 गो क्रेडिट बा इंक्लूडिंग इंग्लिश फ्रेंच एंड मैथमेटिक्स और अर्ली चाइल्डहुड कोर्स चाहला रह के एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 5 9 3 4 4 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 8 जून 2026। सेक्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स सिल्वर टूल्स लिमिटेड जोन रॉयल रोड बेलिया रविया सेश में है खोजा था 2 गो मेल स्प्रे पेंटर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा 2 गो मेल मोटर व्हीकल मैकेनिक जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा 2 गो मेल पैनल बीटर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा 2 गो मेल इलेक्ट्रिशियन जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा 10 गो मेल फील्ड क्रॉप लेबर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा साथ में चला 5 गो मेल बस ड्राइवर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा और एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी बा। एप्लीकेशन खातिन सक बचा आप कभी भी सिल्वर टूल्स लिमिटेड रॉयल रोड बिलिया रिव्या सेश जाए या तो फिर फोन करिए 5 9 5 0 0 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 20 जून 2026।
सेक्टर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स स्पाई टू लिमिटेड जुनगाम जीवन लेन बेलवी मोगल में हक हो जाता दुगो मेल मैकेनिक जिनका 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा अप्लीकेशन।

फोन करिए 51-56-95 पर, अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 10 जून 2026। सेक्टर पैरास्टाटल महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो महात्मा गांधी रोड मोका में है खो जाता एगो स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट की लेक्चरर जिनका मास्टर्स डिग्री बा एप्लीकेशन खातिर आप सक बजाई https://www.mgiorti.ac.mu/ पर, अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 3 जून 2026। यहाँ पर जाकर आप लोग सक बजा अपन एप्लीकेशन के फॉर्म भरे। सेक्टर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तोहरका दिन जो वैकेंसी रखले बा सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर और प्रोग्राम ऑफिसर क्रॉप जो कौजदा लोग हवंजा उनकरा चाहेला एगो सॉफ्ट कॉपी विदा करे के सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्ड फॉर्मेट में बाय फ्राइडे 5 जून यानी कि शुक्रवार 5 जून 2026 दिन के 2 बजे से पहले। पता है सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड और ईमेल एड्रेस है तोहर खातिन mofarc@govenu.org। और याद रखिए कि तोहरा चाहेला है जो फॉर्मा बा अच्छा से भरे के और एगो कवरिंग लेटर भी चाहेला तोहर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस खातिन। और याद रखिए कि तोहर करिकुलम विटाई 5 पेज से ज़्यादा नहीं चाहना रहे के एकर में तोहर सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ डिग्रीज डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स चाहना रहे के अनसर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स तोहर नहीं एक्सेप्ट हो तोहर दैट लिमिट एज तोहर जो उम्र बा वो चाहेला सकंदेजों से जस्ती नहीं रहे के। और आप लोग चाहे तो सकबजा ई वेबसाइट चेक करें http://foreign.govmu.org या तो फिर SADC यानी कि सरेक सेक्रेटरिया https://www.sarek.net पर सकबजा जाए। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 5 जून 2026। सेक्टर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कोमेजा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन खो जाता है यहाँ पर डायरेक्टर कॉरपोरेट सर्विसेज अरबिक ट्रांसलेटर और फ्रेंच ट्रांसलेटर। आप लोग आज इंटरेस्ट दिखावत हुआ तो एप्लीकेशन खातिर सक बजाय मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाए और ई है https://foreign.govmu.org/pages/vacancies.aspx और कुमिजा सेक्रेटरिया खातिन है https://www.kumeza.itnet/ और कुमिजा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन खातिन है https://kumezacompetition.org/। जितना भी कौजदा लोग इंटरेस्टेड हों चाहे एगो सॉफ्ट कॉपी विदा करिए तो हर एप्लीकेशन के डायरेक्टली टू CCCC यानी कि कोमेजा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन और recruitment@kumezacompetition.org पर सक बजे जाए। अगर कॉपी विदा करिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड और अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 17 जून 2026। प्राइवेट हाउस होल्ड खातिन जो वैकेंसी बा हाउसमेट के रिजियों नोवेल फ्रांस एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए EIC रोजबेल 627-48-33 पर। हाउसमेट जो कौची मिलते खातिन जरूरत बा एकर खातिन कॉल करिए EIC कौची मिलते 435-55-30 या 435-33-52। इधर मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो इनटेक जुलाई 2026 की बा नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर मिलिट्री रोड पोर्ट लुइस इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज यहां पर कूबा नेशनल डिप्लोमा इन अप्लाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नेशनल डिप्लोमा इन बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग और नेशनल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ज़्यादा जानकारी खातिर फ़ोन करिए 206-1800 पर या तो फिर ईमेल है kbtcregistry@mitd.mu। अगर वेबसाइट सक बच्चे के करें www.mitd.mu और वैकेंसी खातिन आप लोग सक बजा चेक करें https://mauritiuschops.govmu.org/readnews/vfzssmqwovgqvda9। तो ई रहल तोहर खातिन वैकेंसी अभी पब्लिक सेक्टर में आज हमने वैकेंसी देखब जा तो पब्लिक सर्विस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिवीजन खोजता असिस्टेंट सिस्टम्स एनालिस्ट सीनियर असिस्टेंट सिस्टम्स एनालिस्ट एकर खातिन जाइए ई वेबसाइट पर https://psc.govmu.org/। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 जून 2026।

0: लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन आज आप लोग काम खोजत हुआ तो यहाँ पर तोहरा बता दे ला जा जो वेबसाइट बा http://lgsc.gov.org पर चला जाए के तोहरा एप्लीकेशन खातिन लोकल गवर्नमेंट सर्विस खोजता लैंड सर्वे ये 1 जून से पहले तोहरा चाहला अपन अर्जी विदा कर दे के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिवेजों पर खोजता ट्रेड्समैन असिस्टेंट वेल्डर 1 जून से पहले एप्लीकेशन विदा करिया कप मालोरे विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिवेजों पर खोजता विलेज हॉल एंड सब हॉल अटेंडेड पार्ट टाइम 2 जून से पहले एप्लीकेशन विदा कर दिया पर्स दे फ्लाक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ फ्लाक हो जाता सब हॉल अटेंडेड पार्ट टाइम 3 जून से पहले तोरा एप्लीकेशन चला विदा करेगी कागवा काशा विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ गांपो विलेज हॉल और टीवी अटेंडेड खोजाता पार्ट टाइम 3 जून से पहले एप्लीकेशन विदा कर दिया पुद्रदो हमलेट विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिवर जहां पर विलेज हॉल और सब हॉल अटेंडेड खोजाता पार्ट टाइम 3 जून से पहले एप्लीकेशन विदा कर दिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ पॉम्पलेमोस खोजाता एगो ड्राइवर रोस्टर बेसिस पर 8 जून से पहले एप्लीकेशन विदा करिया विलेज काउंसिल ऑफ बेनारस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ सावान खोजाता विलेज हॉल एंड टीवी अटेंडेड पार्ट टाइम 8 जून से पहले एप्लीकेशन विदा कर दिया और लोकल गवर्नमेंट सर्विस खोजाता अकाउंटेंट एंड सीनियर अकाउंटेंट और 9 जून से पहले तोहरा चाहेला अपन अर्जी विदा कर दे के और ज्यादा जानकारी के लिए एप्लीकेशन खातिन जाइए http://lgsc.gov.mu.org पर तो ई रहल दू थवाई नुलावेनी जो तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल
1: Sports News.

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेनिस के साथ आज के स्पोर्ट्स बुलेटिन को शुरू करेंगे। फ्रेंच ओपन में टाइटल फेवरेट वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका बाहर हो गई। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका को हराया जाना श्नाइडर ने 3-6, 7-5, 6-0 से। वीमेन सिंगल में ही क्वालिफायर श्वालिंस्का सेमीफाइनल में पहुंची कालिंस्काया को हराकर। लड़कों में कुबोली ने उग आलियासिमे को हराया और नाल्दी भी क्वालिफाई हुआ अपने हमवतन बेगेचिनी को हराकर। आज लड़कियों का सेमीफाइनल कोस्ट्रिक खेलेगी अंद्रीवा के खिलाफ श्नाइडर श्वालिंस्का। कल लड़कों का सेमीफाइनल मेंसिच वेरेव और नाल्दी कुबोली, ये कल के लिए है। ट्रांसफर न्यूज। ट्रांसफर बाजार का गरम माल है नॉटिंघम फॉरेस्ट का इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन। मैनचेस्टर सिटी का पहला प्रस्ताव, उसका पहला ऑफर स्वीकार नहीं किया गया। फॉरेस्ट अपने जवान शेर को सस्ते में नहीं बेचेगा, उसके लिए एक ब्रिटिश प्लेयर रिकॉर्ड फी चाहिए। अभी ये रिकॉर्ड 105 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का है जो डेक्लन राइस के लिए दिया गया था। सो सस्ते में नहीं बेचा जाएगा एलियट एंडरसन। वैसे मैनचेस्टर सिटी की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के सांड्रो टोनाली पर भी है। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज कल खेले गए। नेदरलैंड्स की हार हुई, अल्जीरिया ने उसे 1-0 से हराया। पोलैंड 2, नाइजीरिया 2, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 0, डेनमार्क 0, अल्बेनिया 0, इजराइल 1 और इटली की जीत लुक्जमबर्ग पर 1-0 से। आज भी अनेक मैच खेले जाएंगे, इनमें फ्रांस आइवोरी कोस्ट के खिलाफ खेलेगा, फिर स्पेन इराक, स्वीडन ग्रीस। वर्ल्ड कप के दौरान डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिलने वाला है। यह अवार्ड उन्हें 12 जून को लॉस एंजेलिस में दिया जाएगा। ये स्टार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है। अमेरिका में फुटबॉल का क्रेज बढ़ाने और ग्लोबल कल्चर पर उसके असर के लिए डेविड बेकहम को सम्मानित किया जाएगा। टेनिस ITF CAT 14 एंड अंडर सर्किट में अलेक्जेंडर तेवेव ने डबल चैंपियन बना। सिंगल्स और डबल जीतकर फाइनल में अलेक्जेंडर ने एडविन सनासी को हराया। और साइकिलिंग में टू डेलिल सिक्लिस के दूसरे चरण सेकंड स्टेज में साउथ अफ्रीका के चानो सिल्वा की जीत हुई। येलो जर्सी अभी फ्रांस के साइकिलिस्ट

0: गियोम जहुएलिया के पास है। कल के एटाप में अलेक्जेंडर मेयर चौथा स्थान ले पाया। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 7:09 हुए हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले शिवाला लेन मेबर के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 7 जून 2026 को सुबह 9 से लेकर शाम के 4 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर है रोजबेल के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है जेबे रोड, मस्क रोड, तेलगुर लेन, शिवाला लेन, अक्वेट लेन, लुटो लेन, बागेलू लेन, पारासोल लेन, प्रिंसेस मार्गारेट लेन नुमरो 1 एंड नुमरो 2, मोंफर्टिल, बारामिया, ड्रीम प्राइस न्यूग्रोव, रोट रॉयल न्यूग्रोव के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 4 जून 2026 को सुबह 9 से लेकर शाम के 4 के बीच। साथ में है कथोबोन के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अवेन्यू जिरोडे, रिशाओ, सैन लुई, विंसेंट, बोबोआ और हेगनिंग के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 4 जून 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 3 के बीच। फिकॉन्फ्लक के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है कोस्टल रोड फिकॉन्फ्लक, फिकॉन्फ्लक गवर्नमेंट स्कूल, एवेन्यू मुलें कासे और एवेन्यू डे नेनुफा के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 4 जून 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 3:30 के बीच। और अंत में है कस्कावेल के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मार्सेलमा ब्लूप्रिंट जावियर के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 4 जून 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 3:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
1: 819 किलोहर्ट्ज़। ये है रेडियो मॉरिशस।
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 7:12 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में एक बार फिर से सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वैसे सुबह सवेरे 6 बजे से आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सफ़र जो है हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। गुरुवार का दिन है आज, जून महीने की 4 तारीख साल 2026। तो चलिए श्रोताओं, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपके लाए हैं और सुबह का नज़ाना कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम अच्छे विचारों के साथ करेंगे। तो चलिए चिंतन डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जीवन में हताश और निराश नहीं बल्कि प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। स्मरण रहे कि प्रयास और अभ्यास से चट्टान पर रस्सी भी निशान छोड़ देती है।

तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज 4 जून आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम लेकर आए हैं, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह का नजाना कार्यक्रम हम प्रसारित करने जा रहे हैं चंद पुराने गीतों के साथ। 8 बजे भोजपुरी में आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आप चंद डुएट्स गाने सुन सकेंगे। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में साथ में एक भोजपुरी गीत भी आपके लिए हम चलाएंगे। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में 10 बजे समाचार पढ़े जाएंगे, भक्ति धारा कार्यक्रम इसके बाद, और 11 बजे आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के बाद साईदा लेकर आएगी उर्दू कार्यक्रम। दिन के 12 बजे गिरीश आनंद के साथ तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, और इसके बाद तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी की प्रस्तुति में 1:30 बजे विविधा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मराठी भाषा में आप सुन सकेंगे प्रीति के साथ। मंडारिन कार्यक्रम जीन की प्रस्तुति में दोपहर के 2 बजे, 2:30 बजे रंगारंग कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप अमिता के साथ सुन सकेंगे गुजराती भाषा में। आपकी पसंद कार्यक्रम 2:45 पर दोपहर के 3 बजे समाचार प्रसारित किए जाएंगे, और इसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे भक्ति सागर कार्यक्रम सुमिता के साथ, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा, ये कार्यक्रम आप डॉक्टर महावीर जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। सदाबहार गीत, ये कार्यक्रम पूनम के साथ शाम के 5 बजे, 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन, इसके बाद चंद फिल्मी गाने, 6:30 बजे दाविद मंडारिन कार्यक्रम प्रसारित जा, इस कार्यक्रम को वो प्रस्तुत करेंगे, और तमिल भाषा ये कार्यक्रम जो है शाम के 4 बजे आपके लिए, 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा के साथ, शिरीष लेकर आएगी कार्यक्रम गीत गंगा, ये कार्यक्रम जो है मराठी भाषा में आप सुन पाएंगे। भजले प्रभु का नाम देविना के साथ 8:10 पर, 8:40 पर महफिल शब, ये कार्यक्रम समीर के साथ। किरण की प्रस्तुति में भोजपुरी तड़का, ये कार्यक्रम रात्रि के 9 बजे, और रात्रि के 11 बजे सुनहरे पल, ये कार्यक्रम गिनिशा के साथ, चंद पुराने गाने इस कार्यक्रम के जरिए आप सुन सकेंगे। और रात्रि के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक हर तरह के गाने इसके दौरान

0: गाना आप सुन सकेंगे 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। तो हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां
1: झलकियां
2: झलकियां
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

रात गई बात गई, बीती बातों को छोड़कर आज का दिन मुस्कान और उत्साह के साथ अपनाइए। आपका दिन सुख शांति और सफलता से भरपूर हो, हमारे यही कामना है। वैसे श्रोताओं, एक नया दिन हमारे जीवन की किताब का एक नया पन्ना होती है। इसे अच्छे कर्मों के साथ जहां हो सके भरने की कोशिश कीजिए। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 बज रही है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये है सुबह का नजराना कार्यक्रम, चंद सदाबहार गाने आपके लिए।

वैसे श्रोताओं, अकेलापन जो है वो क्षण है, हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति अपने भीतर होती है। जब इंसान खुद का साथ निभाना सीख लेता है तो वह हर परिस्थिति का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। तो चलिए, गीतों का एक खूबसूरत कारवा, इसे हम आगे बढ़ाएंगे अगली भेंट में। किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है राजा रानी।

श्रोताओं, पुराने गीत बीते हुए पलों की खुशबू है जो हर बार सुनने पर नई यादें ताज़ा कर देती है। तो चलिए आपके लिए चंद सदाबहार गीत आपके लिए रेडियो मॉरिशस पे। इस समय हमारा प्रसारण हो रहा है 4028085 पे। बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रहे हैं। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफ़र, इसे हम आगे बढ़ाएंगे।

ये है सुबह का नजाना कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 1900 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। अगर इस समय रेडियो ऑन के होते हो आपका हम शानदार स्वागत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं, आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार हम वापस आएंगे चंद द्वैत्स गानों को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: फजर के 8 बजल बा चल संक्षिप्त समाचार सुना जा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ई खबर बाटे, देश में एमपॉक्स के एगो संदिग्ध मामला के पता चल बाटे। मरीज के एसएसआरएन अस्पताल में आइसोलेशन पर ही रखल गल ह। 64 बरिस के ई मरीज विदेश के हवन जा। सैंपल लेवल गल ह आरी विक्टोरिया अस्पताल के लेबोरेटरी में। टेस्ट के बाद पता चली कि ई एमपॉक्स वायरस ह कि नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फासिल कोलाबकस के अनुसार आज सांझ लेक नतीजा मिल जाए। ओलिविये बॉकुल्ट के लंदन मिशन के लिए के तनाव बाटे। एगो प्रेस कम्युनिके में उनकर प्रतिनिधिमंडल दावा करले बाटे कि बरतानी संसद में उनकर पहल के विरोध करे होला। एगो ग्रुप बगल से उ लोग के डरावल गल ह। बयान में ई बोलल गल ह कि एगो वीडियो आरे एगो फोटो प्रसारित करल जात बा, जिनकर उपयोग प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ई दिखाए खातिर करल जात बा कि ओलिविये बॉकुल्ट शागुस के मुद्दा से विश्वासघात करत हवन। बखेर ई चरण पर ई आरोप खाली प्रतिनिधिमंडल के प्रेस विज्ञप्ति में लगावल गल एगो दावा बतावल जात बा। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थी लोग के जून महीना में कैम्ब्रिज ए लेवल के खातिर मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर फ्री आरी पेपर 12 फेनो से दे के पड़ी। ई परीक्षा लेंदी 8 जून आरी मंगल 9 जून के सांझ के 1:30 पड़ी। उ लोग के अपन कॉलेज में जाए के दे के पड़ी। ई उम्मीदवार लोग मूल रूप से ई जून परीक्षा बाटे 29 अप्रैल आरी 15 मई के दे दिले रहन सब। अखेर बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही गणित के 3 प्रश्न पत्र के लीक होय के घोषणा करलक। एमईएस के ओर से प्रभावित विद्यार्थी लोग के कर सूचना अक्टे से दे देवल गल ह पोस्ट आरी मीडिया के माध्यम से। एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ई परीक्षा के फेनो से आयोजित करे के प्रस्ताव रख लेबा। पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी खातिर कोनो नवा परीक्षा नहीं लगावल जाए। विदेश के खबर में जुन सुर्खी में बाओ में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एगो ऐसन विधेयक पारित कर ले बा जुन से ईरान में कोनो प्रकार के सैन्य कार्रवाई चलाए से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोकल जा सकी। फरवरी में शुरू भेल ई युद्ध के खिलाफ खड़ा हो के 3 कोशिश नाकामयाब रहल। एकर बाद अब जाके 208 के मुकाबला 215 वोट संगे ई बिल पारित हो सकी। फिर भी एकर अमल में आनल जाए परी हभिलेख आशंका जतावल जात बाटे। तय रहल संक्षिप्त समाचार। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

समाचार सुना जा। रॉ रोड रुसबेल में 55 बरिस के सेकंड सैकों के श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल जे विकास नाम से जस्ती जानल जाथरन उगजर गलहवन, उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर घरे रॉ रोड रुसबेल से उठा के किराकरम खातिर मारीजानी रुसबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 2 PM नंबर 199 बाउंड्री रोड रुसबेल में 199 बाउंड्री रोड रुसबेल में 77 बरिस के ससंजी से तौके श्रीमती धनवंती रामचंद पैराशी नाम पैम आज रेखा नाम से जस्सी जानल जाथल अनुगुजर गल हवन, उनकर माटी सुख के 5 जून के दिन के 1:00 परी उनकर बेटा रजनीश आरी अविनाश रामचंद के घरे 199 बाउंड्री रोड रुसबेल से उठा के किरा करम खातिर गांधी पाल माके शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन ऑन फ्राइडे एट 1:30 PM रॉ रोड ग्राउंड रिट्रीट में 72 बरिस के सुसंधु सौंके श्रीमती अंजलि रुकमिन पैदाशी नाम दुमरी आज रजनी नाम से जस्ती डानल रातरन गुजर गल हवन माटी काल दिन के 1:00 परी उनकर बेटा उदय रुकमिन के घरे रारोड गांव घर से उठा के किरा करम खातिर में जिन कौंडे मास्क के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुमोरो एट 1:30 PM सेमाउटन स्ट्रीट मेबर्ग में 80 बरिस के कातोवेंतों के श्रीमती मिसिज हफीज बी ननकू पैदाशी नाम ऐदातुल्ला आरजे अफेज नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी दिन के 12:00 परी उनकर घरे सेमाउटन स्ट्रीट मेबर्ग से उठा के सबसे आगे नमाज जनाजा खातिर मेबर्ग के जुमा मस्जिद और दफना खातिर गिविया दिखे और के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM रागू ले लोशेत्या रूज में 78 बरिस के 77 के श्री राजमन रागु गुजर गल हवन माटी दिन के 1:00 उनकर बेटा परमानन रागु के घरे रागु लेन लोशेत्या रूज से उठा के किरा करम खातिर रिश्तेया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 1 PM रॉ रोड कचिमरित्या में 75 बरिस के 75 के श्री जगदत सिंह संधुहाम जे जग नाम से जस्सी जानल जाथलन आरी आगे बायरन कॉलेज आरी बॉम्बो SSS में पूर्व अध्यापक रहलन उगुजर गल हवन माटी दिन के 11:00 परी उनकर घरे रॉ रोड कचिमरित्या से उठा के किरा करम खातिर विल में के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 1:30 PM रुई गालिया कास्टेल में 54 बरिस के सेकंड का थौके श्री उत्तम दत्त सामनाथ जे प्रीतम नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी दिन के 11:00 उनकर घरे रुई गालिया कास्टेल से उठा के किरिया करम खातिर आली भ्रियों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 11 AM गांधी रोड एन एस फ्लोहों बेलिया में 52 बरिस के सेकंड 200 श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पैदाशी नाम जहाजिया आज बबीता नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी दिन के 11:00 उनकर पति विनोद श्याम लक्ष्मण के घरे गांधी रोड एन एस फ्लोहों बेलिया से उठा के किरा करम खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 1:30 PM काना एवेन्यू कात कोको में 80 बरिस के 80 के श्री हरिप्रसाद रामहित जे महाज ताइय नाम से जस्सी जानल जातलन गुजर गल हवन माटी दिन के 2:00 उनकर बेटा रामित जयदत्त के घरे काना एवेन्यू कात कोको से उठा के किरा करम खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 2 PM यूके में 74 बरिस के 74 के श्री जयराज जीवन जे आगे तगो रोड फोंजुसाक रहत रहलन आरी अनिल नाम से जस्सी जानल रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी सुख के सांझ के 3:00 यूके के समय के अनुसार उठावल जाए क्रिमिशन ऑन फ्राइडे एट 3 PM इन यूके
श्री शंभुनाथ रोड कास्टेल फिनिक्स में 81 बरिस के कथोवैन नौके श्री शांति जगतपाल।

तो चलिए श्रोताओं, 8:22 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। इस समय से लेकर 8:50 पर हम आपके लाए चंद प्यारे डुएट, और ये पहला डुएट जो है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे। और फिल्म का नाम है आंधी, 1975 की मूवी है ये। बहुत ही लोकप्रिय गीत आपके लिए, और इस गीत के बोल जो है गुलजार ने लिखे और संगीत आर डी बर्मन ने दिया। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म आंधी से लिया गया। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके आने से हर राह आसान और हर पल खास लगने लगता है। यह गीत उसी एहसास को बयां करता है कि सच्चा प्यार किसी संयोग से नहीं बल्कि किस्मत की खूबसूरत सौगात बनकर आता है। तो चलिए श्रोताओं, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से लिया गया गीत जो है 1981 की मूवी का एक मधुर और रोमांटिक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। इस गीत में प्रेम है, प्रेम की सादगी भी है, अपनापन है और दिलों के मिलन की खूबसूरत भावना झलकती है। तो चलिए, एक ऐसा गीत जो है जो आज भी बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही प्यार के साथ आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं।

तो चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। 1979 की मूवी झूठा कहीं का, बहुत ही प्यारा सा गीत है जीवन के हर मोड़ पर। ये गाना जो है हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक सफ़र है जहाँ हर मोड़ पर नए अनुभव, नई चुनौतियाँ और नई खुशियाँ हमारा इंतज़ार करती है। यह गीत उत्साह, दोस्ती और जीवन को खुलकर जीने की प्रेरणा देता है।

चलिए श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, और ये फिल्म जो है फिल्म चलते चलते से लिया गया, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान पर फिल्म आया गया ये गीत, जहाँ पर इस गीत में प्रेम, विश्वास और जीवन की यात्रा को बहुत ही सरल ढंग से और सुंदर अंदाज से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए एक अंतिम नजाना आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा डुएट। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम जो है हम करने वाले हैं। फिल्म का नाम है त्रिशूल। वैसे फिल्म बहुत ही पॉपुलर है और इस फिल्म के सभी गाने बेहद ही हिट हुए हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ों में आपके लिए हम चला रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओं, 8:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी विरासत में आपके स्वागत बा। आज हमने एगो ऐसन विरासत पर बात करब जा जेकर से आप सब कोई जुड़ल हो जा। हमने बात करब जा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर, इंटरनेशनल टी डे, जोन हर बरिस मनावल जाला दिसंबर महीना में और मई महीना में। और संयुक्त राष्ट्र ई प्रस्ताव रखले रहल कि 21 मई के दिन एक मनावल जाए, कहे कि चाह के जोन फसल है वो मई महीना में अधिकांश देश में होवेला, ज़्यादातर चाय उत्पादक देश में। चाह एगो धरोहर, एगो विरासत के रूप में देखल जाला। और ई बात के पुष्टि आप भी करबा, कहे कि जब से आप हो संभले हवा तब से आप चाह पिएला। आपके माता पिता चाह पियत रहलन, आपके दादा दादी भी ई चाह पीले हवन। दुनिया भर के करोड़ों लोग के दिन के शुरुआत एक गिलास या एक कप चाय से होवेला। और जब आपके घरे कोनो मेहमान आए तब भी आप चाही ओके देबा। और आजकल ऑफिस के मीटिंग भी चाह पर ही चलेला। और पानी के बाद मानल जाला कि चाही दुनिया के सबसे मशहूर पेय पदार्थ है, सबसे मशहूर लाभवासो है। चाह भी अनेकों प्रकार के बा, जैसे व्हाइट टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, मेडिसिनल और अदरक के चाय, मसाला होला चाय, कड़क चाय, इलायची होला चाय इत्यादि। आज तक चाह के कितने बिजनेस भी चलता, कितने आगे कॉफ़ी खुलल रहल। जब कुछ हो पिए चाहबा तो एगो कॉफ़ी शॉप में जाइबा। लेकिन आज बड़ा बड़ा ऐसा उद्योग भी खुलल जाता जहाँ पर आपके खाली चाय मिली। और आज चाय के बनावे खातिर भी अलग अलग आधुनिकतम टेक्निक बन गल बा। आज इंस्टेंट चाय भी बा जहाँ पर आप सकबा ऊ चाय के खरीद के बस गर्म पानी में मिला के ओके खाली पी लेवे। चाय शुरू हो रहा चीन में, जहाँ पर ई एगो विशेष औषधि के रूप में माना जात रहा। चीनी मेडिसिनल के कारण ही चीन में ज़्यादातर चिकित्सा खातिर ही चाह पियल जाला। 17वीं सदी में ई चाह यूके तक चल गल। दुनिया में चाह पिए होला लोग इतना जस्ती बा कि दुनिया भर में बड़ा पैमाना में एकर पैदावार होवेला। लेकिन चाह के पैदावार में ढेर चुनौती, ढेर कठिनाई बा। सबसे पहला चुनौती है इस सेक्टर में चाह तुरे होला लोग के कम वेतन, उ लोग के कमती पैसा मिलेला। और ग्रामीण इलाका में ई चाह के काम करवा लोग के स्वास्थ्य सेवा भी एगो समस्या है। और 50% से जस्ती औरत लोग चाह के खेत में काम करे रंजा, तो ई औरत लोग के शिक्षा से भी वंचित रखल जाला ढेर देश में। और 2004 में एगो पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावा गल। 2005 में नई दिल्ली में और 2006 में श्रीलंका में ई दिन के मनावे के शुरू करा गल। अलग अलग देश के अलग अलग दिन पर ई दिन मनावे के प्रथा जारी करा गल। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ एक ही दिन में ई सब जो चाह बा एके सम्मानित करे के फैसला ले लग। और 21 मई के ई दिन के मनावे के घोषणा करा गल। और जैसे अभी बोल दी चीन में ई एगो औषधि है, वैसे ही भारत में भी आयुर्वेदिक विद्या के उपचार में भी ई शामिल है। और भारत में जैसे तोहरा बोल दी अलग अलग किस्म के चाह बा, मसाला चाय, इलायची होला चाय, कड़क चाय, अदरक होला चाय। और केन्या भी एगो सबसे बड़ा उत्पादक देश में से एगो है जहाँ पर चाह बनेला। और फिर

0: आयुर्वेद की जब बात करब जा तो आयुर्वेद अदरक के साथ साथ जो सफ्रोन है मतलब कि और भारत में अदरक के साथ साथ हरदी और हरदी के साथ विटामिन सी पर बहुत जोर देवेला जो उनकी हमने के सिथ्रोन नींबू में मिलेला तो इस सब पर भारत एक से बढ़कर एक चाय के उत्पादन करता और अंतर्राष्ट्रीय दिन के जब पालन करत है जा तो एक संगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम बा ओके भी एक में शामिल करा गल बा। चा एगो ऐसा उद्योग है जहाँ पर ढेर कर्मचारी के भर्ती होवेला और मॉरिशस में भी देखब जा तो बॉशेरी एगो विरासत बन गल बा। आप जब विदेश जेबा तो जब आपके समझ में नहीं आए कौन चीज़ देवे के उपहार के रूप में तो चाही वो एगो वस्तु है मॉरिशन चाय जो आप सकबा भेंट करे। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले समाचार सुन सकेंगे आप और समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अनुराधा के साथ। तो हमारी ओर से आप सभी को शुभ दिवस।

0: अब आप यशना मिश्रा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार यशना।
1: नमस्कार अनुराधा। सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये खबर, देश में एमपॉक्स के एक संदिग्ध मामले का पता चला है। मरीज को SSRN अस्पताल में आइसोलेशन पर रखा गया है। 64 साल का मरीज विदेशी है और सैंपल्स दिए गए हैं। विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी में ये टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फाजिल कदाबकस के अनुसार आज दोपहर बाद तक नतीजे प्राप्त हो जाएंगे। ओलिविए मॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया है कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले एक समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। बयान में यह भी कहा गया कि एक वीडियो और एक फोटो प्रसारित की जा रही है, जिनका उपयोग प्रतिनिधि मंडल के अनुसार यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविए मॉकुल्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया है या शायद उसके मुद्दे से विश्वासघात किया है। हालांकि इस चरण पर ये आरोप केवल प्रतिनिधि मंडल के प्रेस विज्ञप्ति में ही लगाए गए दावे हैं। अब बच्चों के लिए ये खबर। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर 1:30 बजे उनके अपने कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएँ 29 अप्रैल और 15 मई को दे दी हैं, लेकिन इसके बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्र के लीक हो जाने की खबर की। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इसके बारे में पहले से ही सूचित कर दिया गया है। तब तक के लिए बच्चों को ये भी कहा जा रहा है कि पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इस प्रश्न पत्र के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन द्वारा कल एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कई घोषणाएं की गई। 21 जून को सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजा की जाएगी। इसके अलावा 29 जुलाई से अयोध्या रामायण प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। 7 प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें नौजवान और मंदिर की मंडलियां भाग ले सकती हैं। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान अगले साल के हिंदू कैलेंडर की तैयारियों पर भी जानकारियां दी गई, जो अगले 3 महीनों में तैयार हो जाएगा। गंगा तलाव में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए MSDTF द्वारा विशेष निर्देशों की एक सूची भी बनाई जा रही है। विदेश की खबरों में US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। फरवरी में शुरू हुई इस युद्ध के खिलाफ खड़े होने की 3 नाकामयाब कोशिशों के बाद अब आखिरकार 208 के मुकाबले 215 वोटों के साथ ये बिल पारित हो चुका है। फिर भी इसके अमल में लाए जाने पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play, and NBCRadio.tv. NBCRadio.tv.
3: 819 kHz. ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार और आदाब। आप सभी श्रोताओं को और समस्त दर्शकों को हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आज की चर्चा, इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत हम करते हैं। यो तो आज तकनीक पर अंजू लक्ष्मण हमारा साथ दे रही हैं, प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और इस प्रोग्राम के निर्देशक हैं निजाम। तो हम सब बिल्कुल तैयार हैं और ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और जाहिर है आप ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है किस विषय पर आधारित होगा। यूँ तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली, स्वच्छ परिस्थिति का यंत्र जो है मानव जीवन की, उसके बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज हम विशेष तौर पे पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा करेंगे और आज पूरी दुनिया

0: जो है जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है और इन तरह की चुनौतियों को लेकर के हम लोगों की जिम्मेदारी कौन सी है, हम लोगों की क्या कदम उठाना पड़ता है, इसी विषय को लेकर के इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो वरिष्ठ अतिथि हैं। आप लोग उन लोगों से भली भांति परिचित हैं और मेरी जो दाईं ओर हैं हमारे साथ हैं डिविजनल एनवायरनमेंट ऑफिसर जो पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हैं, आप हैं श्री सत्यानंद बसकरावत जी।
1: नमस्कार
0: जी। और हमारे जो दाएं बाएं ओर हैं हमारे साथ हैं सब इंस्पेक्टर ओमदत्त सीताराम जी जो पुलिस दे लॉन्विरोनमेंट के कर्मचारी हैं। आप दोनों को नमस्कार और स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। और श्री सत्यानंद जी, पहला हम ये पूछब जा, जैसे कि सब कोई जानी ला जा कि कल आज तो 4 जून है, 4 जून कल मतलब हमने के पूरा देश जो है विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनावल जाए, तो मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो हम आपसे यही पूछब कि जो एनवायरनमेंट डे जो दिवस जो है वो काहे चाहला मनाए के, एक मायना कौन ची है और हर बरिस में एगो टेम रहेला, हर बरिस एगो टेम, तो ये टेमवा कौन ची है मतलब 2026 के और एक लैंपोटॉन्स कौन ची है, कृपया हमने के श्रोता और दर्शक लोग के बतावा।
1: पहला बात बा जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस, वो हर साल 5 जून के हमने मनाएला सा दुनिया भर में, प्लस की 150 पेई एक सेलिब्रेट करेला और ये कमांसे हो रहा लाने 1972 से जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक डिक्रिते करे रहा, तब l'année 1973 c'est première fois commencé à célébrer que le World Environment Day aur okar slogan rahal only one earth yani ki ek matra prithvi haule pourquoi c'est abhi tak hamni admi log ke conscientiser karte hain sa sensibiliser karte hain sa l'importance dharti ma ki l'importance l'environnement ki aur kon kon kadam chahiye leke हमने के पर्यावरण के कैसे बोलेला सा बचाई के सुरक्षा करे के और क्लाइमेट फ्रेंडली बने के यानी कि क्लाइमेट चेंज के भी को बात करे के। तो हाई साल लाने 2026 में जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट हुई ओकर टेम है क्लाइमेट चेंज पर और काहे सेलिब्रेट करेला सा ये कॉन्शियंटाइजेशन करे खातिन सभी कोई जानी कौन ची है लॉन्विरोनमेंट ओकर लैंपोटॉन्स का है, बस कि हमने के ध्यान में रखे चाहिए कि अगर हमने अपन लॉन्विरोनमेंट के नई पोतेजे करब सा तो हमने के लॉन्विरोनमेंट हमने के नहीं सके पोतेजे करे, यानी कि हमने ये के जीवन अफेक्टे होए और हमने के जो जेनरेशन फ्यूचर बा वो लोगों और ज़्यादा अफेक्टे होए
0: जस्ती असर पड़े उन लोग के पर। तो देखा जा कि कोई कोई जगह ऐसे टेम्परेचर जो ना वो कभी मोटे होला तो कभी बारिश ना हो के बराबर रहेला, इन ओदाशों वो रहेला और हर तरह के मतलब सकब जा बोले काफ़ी असर पड़ता हमने के जो मौसम पर। तो इस सब कौन कारण सकेला
1: हाई कारण पर आई के अगर ये हम बोलती जब लॉन्विरोनमेंट के जब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करी ला सकता जोन जोन डिफरेंट टेम पर सेलिब्रेट करी ला सकता, पहला बा चेंजमेंट क्लाइमेटिक और दूसर दूसर टेम हर साल एगो टेम रहेला,
0: एगो टेम रहेला
1: एगो कोनो लाने सेलिब्रेट करें सा प्लास्टिक पोल्यूशन सब जब मोरिस में ढेर प्लास्टिक हो गल बा तालिर ले बतिया सा प्लास्टिक कैसे चाहिए जिमिनी होल बा मोरिस में और कौन कौन ऑल्टरनेटिव बा और कौन कौन लालवा बा और एयर पोल्यूशन बोलना सा पोल्यूशन लेयर बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जितना जीव जंतु बा ओकरा चाहिए प्रोटेजे करके प्रिजर्व करे के, सी लेवल राइज जो बोलना सा समुद्र के स्तर में वृद्धि हो गल

का मोटे हुआ था और कंसुमेशन जीरा मान हमने अभी एगो लेमन में जे था जहाँ सब चीज फासिल देखिला सर मान ले मान ल एगो चिट टूट गल बा नहीं बना सर दूसर नवा किन देव सर बस कि फासिलिते ढेर बा तो एगो कॉन्सेप्ट है जो बोलिला सर रिज्यूस रियूस रिसाइकल आगे के आदमी करत रहा से हमने के अंकवाजे करते सब करे के और जो बा फूड सिक्योरिटी अब

0: खाइके चीज ले गेम सब चीज तो देखल हौ ले पकवा में ऐप होते हो नहीं सकत रहल होई बस के ढेर पे यहाँ फेंकते होगा रहा तो हमने के चाहिए अपन वो तो सफिजेंस अलिमेंट यानी के माने कि
1: अपन चाहे करी के
0: जो पैदा करीला से हौ खाप से और ऐसे हमने पर्यावरण के पोते जिक्रब से और एगो बात जो बोली ला सा लाना चाहिए इको सिस्टम जितना चीज है कैसे लॉन्विरोनमेंट सब चीज चाहिए पोते जिक्र के अब दूसर बात बा बोला सौजमो क्लिमाचिक कैसे होला सौजमो क्लिमाचिक हुआ था सैप सैप लॉन्गाज में एक्सप्लिक करा था कि जब हमने जितना एक्टिविटी करा था ऐसा कैसे बोली ला सा डिफरेंस सकते हैं बा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा था ऐसा तो हैवी फ्यूल ऑयल से भी करा सकते एगो गैस इमिट होला कार्बन डाइऑक्साइड एगो ग्रीन हाउस गैस है तो ये एगो गैस है जो बोली ला सा ग्रीन हाउस गैस और ये जब एटमोसफेयर में जाला तो धरती के मान लो एगो मोल्टो निखर डूब देवेला तब धरती के तापमान बढ़े लगेगा अब दूसर सकते हैं बा कैसे बोले जा सकता ट्रांसपोर्ट के सकते हैं जितना व्हीकल बा लोटो बीस कैमियों जब मोटे रूले होला तो फ्यूल से भी होला डीजल लाइसेंस तो हयो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर असल में कार्बन डाइऑक्साइड एक को ग्रीन हाउस गैस नहीं है और दूसर प्रकार के गैस बा एग्रीकल्चर वो जब करेला से जो देश में कैसे चावल पैदा होला हो जा पर ही एगो गैस है मीथान ओहू एगो ग्रीन हाउस गैस है तो और कैसे बोले सर इंडस्ट्रीज में जिसमें में हैवी फ्यूल ऑयल से भी होला और बॉयलर में वापे अप्रोजिया करके और मशीन के सब चलाए के तहियो से गैस आले फे देश से अप्रोजी होला जिनके बोले सर ग्रीन हाउस गैस तो हई सब गैस वन जब एटमोसफेयर में एमिट होला तो जितना सूरज के किरण जो ना होला लाली में सोलह जितना होला सबके रिफ्लेक्टिंग कर देवला फेनों से लाते में तो धरती माँ के तौर पर गाचे बरे लगेला जब बरे लगेला तो हई पोल नो पोल सिद में जोन आइसबर्ग सब फोन हुई लगेला ये जब फोन हुई लगेला तब समुद्र के स्तर मान लो कर नीवो मोटे हुई लगेला तब जैसे छोटा छोटा देश बा कैसे मोगिस है गो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है तो देख प्रॉब्लम होता इरोजन कुछ है मान लो कोस्टल इरोजन होता प्रॉब्लम होता जितना कोई बोला में रहेला सब कोई अफेक्ट होता
1: आजकल हमनी के मोरिसवे में सगरो ऐसे होला तो हमनी के कौन कौन खास ऐसे जो हमनी के डोमिनेट होता कौन कौन ची
0: मन बोले खोज तो कैसे जस्ती अफेक्ट होला
1: सर हमनी के
0: तो क्लाइमेट चेंज से सब सकते अफेक्ट होला
1: कैसे ई बरिस 2022 के वर्ल्ड पर्यावरण दिवस की टेम जो है एक्ट नाउन मतलब क्लाइमेट एक्शन देखे में तो ई में हमने कौन चीज चाहेला मोरिस में कौन खास ऐसे होता जो हमने के चाहे अपन प्रिकॉशन लेके अपन मतलब जिम्मेदारी लेके कि कुछ हो कौन चीज बोल पा
0: हमने जनता लोग जो बोली ला सा ढेर एक्शन सकप से ले क्लाइमेट फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली बने के पहला कौन कौन प्रभाव होता जब तो पे गाचा उगमौते होता मॉरिशस में तो है जो प्रोजिक्शन एग्रीकोल अभी बटरल से फूड सिक्योरिटी तो जो प्रोजिक्शन एग्रीकोल होता उसकी बेसे हो जाए 30% से लाने दे मिल सैकौंटले और जो प्रोजिक्शन कान है चीनी के पैदा जो पैदा करेला सा ओकर गौनमो सकी बेसे हो जाए 48% से 67% दे पस के क्लाइमेट चेंज से पहला टेम्परेचर ऑगमेंटे होला तो प्लांटो अफेक्टे होला दूसरा ओकर पानी जन बरसेला कमती होता घटता तो प्रोजेक्शन बेसे होला अब देखब सब प्रोजेक्शन के कोते पानी के देखब सा तो पानी घट गल बा 1950 से अभी तक 2022 ले जितना पानी बरसेला बेसे हो गल बा 8% से और अभी 2050 तक जो पानी हमने के मिलेला बारिश के पानी और घट जाए 30% से अभी यहाँ बोलते हैं हमने के देश
1: सेव वाटर
0: बहुत ही सुफेर होता कुते पानी और रिजर्वोर में हर साल उतना सिक्लोन नहीं आल बा जो पेयोद फेवरी में ढेर पानी आवेला और सब रिजर्वोर देखते हैं सर तनी कमती पानी बा तो अब सब कोई अब बहुत ही कंपाई करते हैं सर पानी घास पिए नहीं करे के कुओं घास पिए नहीं करे के हर सब चीज़ पर
1: अच्छा, हम आज की चर्चा हमारे आप लोग के समक्ष पर रेडियो मॉरिशस और टेलीविजन TV3 पर भी प्रस्तुत हो रहा है। और हमारे साथ, जैसे कि हमने कहा कि हमारे साथ पुलिस एनवायरनमेंट के सब इंस्पेक्टर अमृत

0: सीताराम जी भी उपस्थित बा। हाँ तो भाई जी हमने बोली रह जा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आप लोगन के जो कौन चीज कौन जिम्मेदारी आवेला ये जब दिवस आवेला कौन खास जिम्मेदारी होला?
1: हाँ देखा पुलिस डे एनवायरनमेंट जो ना हमने खातिन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था इसे तो हमने 5 जून के मनाएला सा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमने खातिन जो हमने ला पुलिस डे एनवायरनमेंट ऐसा हमने खातिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे साग जो रोज के रोज आवेला बस कि कहे हमें जितना कॉम्प्लेट मिलेगा सब लिए है एनवायरनमेंट से। तो हमने जब कॉम्प्लेट हुआ जब मिलेगा तो हमने जो इक्कीप बा हमने जो टीम बा जो 7 गो टीम बा पहुँचे मुरुस में तो वो लोग तो कोनो ना कोनो फासो जाते हैं एनवायरनमेंट में खातिर ना काम करे। हमें तो जब सब बोले हमने खातिन वर्ल्ड एनवायरमेंट में सब जू टू ले जू हमने खातिन अथिया वर्ल्ड एनवायरमेंट में तो हमने कैसे करेला सर हमने कैसे पर्यावरण के बचाव दे सर जो लालुआ बा जितना लालुआ बा एनवायरमेंट के हमें ऑन फोर्स करेला सर। फॉर एग्जाम्पल लालुआ बाटे इलेगल डंपिंग के प्लास्टिक के बा स्मोक के बा और जितना भी एनवायरमेंट से लिए है जितना ऑफेंस ये सब के हमने एक पर काम करना जा। अब कल ज़्यादा सेंसिटाइजेशन करना सर जो भी कंप्लेंट करना सर उनमें सेंसिटाइजेशन जहाँ भी जाएगा सर बाजार में जब सर प्लास्टिक विभाग पर सेंसिटाइजेशन कर सर जो डैम्पिंग जहाँ हो जे आकी से जब मिलेगा तो वो लोग एक फिक्स पेनाल्टी दे ला जा मैसेज में जब जाएगा जा जहाँ आकी से नहीं है तो वहाँ गाँव के जो आदमी बा वो लोग सबके सेंसिटाइजेशन के ला सर कॉलेज में लेकोल में जाके सगरो सेंसिटाइजेशन हमने के कैंपेन है हाई के छोड़ के है सब के छोड़ बट आर हमने क्लीन अप कैंपेन भी कर ला जा जहाँ पर डैम्पिंग रहला है सब जाके वन एट वायस कैला सर ढेर लोकल उस होती बा हमने के जे हमने के संगे साथ में मिल के काम करा सर तो ये सब कमन तो हमने तो रोज के रोज हमने का दिन
0: अच्छा इस स्टैटिस्टिक कौन सी बोले ला थी ऑफेंस पर कौन सी कितना और मतलब 2 बरिस आगे कितना रहल और अभी
1: नहीं देखा स्टैटिस्टिक जिम्मी नहीं होता उसकी काम करे रही जा कैसे आगे हमने जन लीटरिंग में रहती जा कैसे वो सैंप वैसा इलेगल लीटरिंग कैसे वो एगो व्यक्ति वो फीमेल करके एगो सिगारेट में एगो सिगारेट जीटर बेकटा तो हमें कॉन्ट्रोवर्शन शुरू में लगा दिशा तो ढेर रहा अब कल कल कॉन्शियस चीज़ें उठन सर वो लोग के अति कमती होता डैम्पिंग भी कमती होता कैसे टपास बा मोटरसाइकिल में भी की कमती बा वैसे मैं फिनी के तो फिनी नहीं हुई ना ये सब डैम्पिंग बा जितना कॉन्ट्रोवर्शन बा स्टैटिस्टिक बदलाव ला कि थोड़ा सुन बेसी होता वैसे मैं अभी बहुत चीज बा
0: और यहाँ मोरिस में ये सब होता था रोड्रिगो के ऊपर आप लोग ही काम कर लेते
1: हाँ देखा रोड्रिग में भी एगो टीम बा उकर जो ऑफिस है पोमाचेरी में पोमाचे में है वहाँ पर एगो टीम बा वो भी वो लोग भी अपन जितना काम बा वो लोग के एनवायरनमेंट के वो लोग अपन वहाँ काम करते हो जा बात बोला था कि वहाँ पर प्लास्टिक जीतू नहीं बा एगो पे ऐसा मोरिस से बहुत आगे बा
0: अच्छा
1: वहाँ पर प्लास्टिक नहीं बा वहाँ पर प्लास्टिक फ्री है वहाँ के आदमी लोग जैसे आगे सर्विस कर ले जाए टॉन्ट काफिया के वाकुआ के यही सब जाफे वन जस्ती सर्विस कर ले जाए मिल देख बहुत अच्छा हो जा लो।
0: तो इस समय हम आज की चर्चा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपके पास कोई सवाल हो या कोई सुझाव आप देना चाहेंगे तो 4028085 पर हम लोगों को ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। फिलहाल अंजू से गुजारिश है कि गाना चलाएं हमारे श्रोता और दर्शकों के लिए।

0: जैसे कि सब कोई जाने लगा कल हमने मनावब जा विश्व पर्यावरण दिवस और हमने किचन प्रोग्राम आज यही विषय पर आधारित है और श्री बसकलावा जी आपसे यही पूछब कि जन टेम रखल गलबा ई बरिस जैसे क्या बोला इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड हमारे जो भविष्य के बारे में मतलब फ्यूचर के बारे में तो ये जन टेम जन है कौन कदम हमने के चाहेला अपनावे के और एक टेमवा काहे रखल बा काहे रखल गल बा
1: पहला ये टेमवा जैसे बोला इंस्पायर्ड बाय नेचर यानी कि प्रकृति से प्रेरित जैसे बोलेगा सब परोपकारी पेड़ एगो गांची जब छोटा से बड़ा होला तो जब बड़ा हो जाए तो लकड़ी मिलत रहा आगे से भी कर पकाए के मेप बनाए के खाए के मिली ओकर जे पत्ता रही बद मोम पत्ता और फल मिली तो खापसा वो खाली देवेला तो हमने लानाचिया के प्रोटेजे करे चाहिए हमने के चाहिए लानाचिया के जैसे लानाचिया हमने के सब चीज़ देवेला हमनियों के चाहिए लानाचिया के प्रोटेजे करे के और इंस्पिरे हो के ओकरा पोल्यूशन नहीं करे के है पहला बात बा दूसरा बा फॉर क्लाइमेट यानी कि जलवायु के लिए अभी दुनिया भर के सभी देश अफेक्ट होता सौम क्लिमाटिक से जो छोटा छोटा देश बा जैसे मॉरिशस बा एगो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है मान लो चारों बगल पानी बा तो बहुत अफेक्ट होला सा तो हमने सौम क्लिमाटिक पर हमने रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर सौम क्लिमाटिक के हमने के एमिशन गैस वाले फे देश है 0.01% हुए हैं सिर्फ दूसर देश है जो बड़ा बड़ा डेवलपे है वन सा वो लोग बहुत

0: limit karela aur hamni affecte hoila sa seulement sapa vedia ki hamni action nahi le wapsa hamni ke desh mein bahut action liya ta solmo climatic par aur troisième ha jun bolila sa for our future yani ki hamare bhavishya ke liye jitna action aad le wata isa jun future generation ba o log par निमन प्रभाव पड़ी अब जे एक्शन नहीं ले वापस तो हमने के फीचर जेनेरेशन बोलियन सा हमने से तो नदी रहल नदी से पोलियो होगल अब कुछ नहीं पा लामे रहल लामे में मच्छी रहल बहुत मच्छी रहल सब मच्छी लापिस करके सब फिनी कर दिली सा तो जो लानाचिया है ओकरा चाही हमने के चाही निमन से ओकरा सेवी करके जब मैं फीचर जेनेरेशन जो आए वो लोग कंटिन्यू से क्या से सेवी करे एक बोलेला सा डेवलपमेंट जिराब तो अब जो जस्ती ध्यान में चाहिए रखे के लानाचिया और लावी इमेन हमने के सेवी डिपेंड है लानाचिया पर जो लानाचिया के पोते से निकल सकता तो हमने के लावी दौजे में हो जाए और ये खातिन हमने के चाहिए एक्शन लेके और जैसे बोलेला सा एजेंस क्लिमाटिक का भी चाहिए ढेर एक्शन ढेर कोई एक्शन ले होता तालेर ले सकब सब टिप्स बोले कैसे चाहिए क्लाइमेट फ्रेंडली बोले के बने के
1: लिमिट टेंपरेचर जिन चाहिए ला 1.5 डिग्री रहे के ता दिखल जात बाकी एकर से जस्ती हो जाता
0: हाँ जितना एगो प्रोग्राम कर ले सा नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन में तो ये प्रोग्राम में बोलटली सा ये जो डॉक्यूमेंट वहाँ प्रिपारे होला मोरिस प्रिपारे कर रहा 29 सितंबर 2025 में एक और मैं सब प्रकार के एक्शन जो गवर्नमेंट और मॉरिशस ले पब्लिक ले प्राइवेट सेक्टर ले सब कोई और जनता कौन कौन एक्शन ले सब ओकर में डालल बा तो सब पे जब अपन एनडीसी सुमित कर लन सा जो कोबो शौकात है क्लाइमेट चेंज पर तो देखल कि हाई 1.5 डिग्री के टारगेट वा जो है जो टेम्परेचर मोटे होता ओकरा 1.5 डिग्री से जस्ती नहीं हो दे चाहिए तो देखा था जब सब पे के जब कंट्रीब्यूशन आजुते करके देखल बा तो वो 1.5 डिग्री पर नहीं होता वो 2.5 डिग्री 3 डिग्री पर गिरा था तो वही से अभी ओ निवो इंटरनेशनल बोलल बा जितना पे अपन एन डी सी प्रिपेयर कर रहा था चाहे जस्ती एम्बिशियस रहे के मान ली कैसे सकेंस घटाई हाई गाज आले फे देसे और चाहे ज़्यादा रेजिलियंस ऑगमोंटे करेगी यानी कि कैसे हमने जस्ती सकब सा अडाप्टे हुई हमने के डिफरेंट सेक्टर है कैसे पानी के सेक्टर है कैसे अडाप्टे हो सर कैसे बहुत ज़्यादा बनाओ अब सर कोची कर अब सर आगे कल्चर में क्या कर अब सर चाहे जस्ती आगे कल्चर करे के लेगीम सब पैदा करे के सलमा फैचिलीजों ढेर से भी नहीं करेगी मैं फीमिये और कॉम्पोस्ट सकब सा ज़्यादा से भी करे बायोडाइवर्सिटी कैसे जीव जंतु कैसे हमने सकब सा प्रोटेज करे जो हमने के प्लांट एंडेमिक बा जो खाली हमने के देश में रहेला और दूसर जीव जंतु कैसे प्रोटेज करब सा हमने के जंगल में जन्म खाली एन पूसो नहीं तो दे पूसो जंगल रगल बा तो ऐसे ऐसे ढेर एक्शन बा जो हमने दिया था प्रोटेज करे के ला नेचर के एनवायरनमेंट के और क्लाइमेट के प्रभाव जमे हमने पर ढेर नहीं पड़े
1: तो सीताराम जी हमने के नया पीढ़ी के जागरूक खाते खातिर कौन सी जस्ती लम्फा जालेगी कौन सी बोल बाई कर पर
2: देखा हम तो हमने कैसे बोल सा हमने एनफोर्समेंट में से ज़्यादा तो हमने देख ला जा कि कितना कौन केस हो उसमें जस्ती लॉविरमों के हानिकारी बा हमने के जस्ती लौकेला डैम्पिंग जो होता पर्यावरण में इतने अच्छा बना इसे बोले इलीगल डैम्पिंग जो है वो बोले सा इलीगल सारे जो कानून के खिलाफ बा इत नहीं अच्छा बा तो हम तो जनता के जो पहुँचे जनता बा नई पीढ़ी हो जो बा उन लोग के भी हम बोला कि हाई सबसे दूर रह के जो डैम्पिंग बा इन नहीं करेगी जो पब्लिक बा हमने के इन्फॉर्म करेगी पब्लिक के हमने तेरा पुलिस से कुछ चीज़ें की पैसा पहुँचे मो इसमें जिस 36 पर्सनल बा काम करेगा मो इसमें तो हमने तो ओमनी प्रेजेंट इरप्शन है सगरो तो हमने के ला पुलिस काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन से तो हमने के बोलती कि पब्लिक के सकियन से हमने के जो हॉट नंबर हॉट लाइन के जो नंबर हुआ उनमें कंप्लेन करे के फेंका था जाना डिनाउंस करे के ऐसा कम हुआ करा था और फिर भी जे कोनो डंपिंग साइट हुई ढेर कोई एक कूट फेंकी दो कूट फेंकते फेंकते ढेर मना कचरा हो जाना वहाँ पर तो हमने के चाहना बोले कि डंपिंग साइट हुआ कहाँ पर बा

0: हमने के मिल जाए जानब से कहाँ बा हमने सगब से अपन लेकिप के सर्वियंस में डाले वहाँ पर
1: एक चीज बोला क्रैक डाउन ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर करी ला
0: तो हमने जहाँ पर सस्पेक्टेड केसेस है वहाँ पर हमने क्रैक डाउन ऑपरेशन करी ला सा हमने लैंड सिविल में भी काम करी ला जा हाँ। हमने लैंड सिविल में डाल ली ला जा जब मैं पब्लिक नहीं जाने की के हाँ वहाँ पर तो लोग वहाँ लैंड सिविल में डाल के और सब क्रैक डाउन ऑपरेशन हमने करी ला जा सब टाइम में सब किसी बात इलीगल डंपिंग के ओकर क्रैक डाउन करी ला सा स्मोक ऑपरेशन के बाद ओकर भी क्रैक डाउन करी ला सा प्लास्टिक के जो बात ओकर भी क्रैक डाउन करी ला जा जितना ऑफेंस लिए से हमने क्रैक डाउन
1: तो व्हीकल्स ब्लैक स्मोक पोल्यूशन क्रैक डाउन कैसे कैसे प्लान करी ला सा
0: देखा ब्लैक स्मोक तो जाने लगकर में कार्बन है उ तो लासोंटे के ने छा अब फैला हमने के जो साटो देखी बा हमने ऑर्गेनाइजा के रस अटी कैसे बेला ऑपरेशन ऑनचे मोरिस में तो हमने वो ला पारे है स्मोक मीटर और मॉक का कपेले वो ला लेके सेविक ला सा उसे हमने जितना सस्पेक्टेड व्हीकल है दूर से देखी ला सा जो व्हीकल जो ब्लैक स्मोक एमिट कर रहा तो ओके हमने आगे टे करके तो चेके के ला सा मासी वहाँ से तो जब भाई मासी वहाँ से चेके कर सा तो एगो पूसोंटाज है ओका में ब्लैक स्मोक जब वो पारे के ला 50% आ मोटी रही तो वो एगो फोन सुझला तो जब 50% से जब ज़्यादा रहला तो ओकर एगो जुर्माना है 10,000 rupees तो हाउस ऑफ हवा के
1: हाँ
0: जिस मिल ओके दे ला सा अब जो व्हीकल के 70-75% ब्लैक स्मोक बा जो इमिट कर रहा तो वो के होला मानवा पारी हुए है जिस मिल है प्लीज एगो ओकर पॉबिज में एगो प्रोहिबिशन नोटिस है वो आ फिक्स कर दिला सा का है पा प्रोहिबिशन नोटिस हुआ वो प्रोहिबिशन नोटिस हुआ वो डाली ला सा जब मैं वो व्हीकल वा ओके जो प्रोपीटे हुआ बा ओकर डिवो बचाना के बना के रिपारी करके ओके तब NLTR में जैसे बोला सा NTR वहाँ जाके पूछिए करके तब NTR के ऑफिशियल ओके चेके कर दिया सर जब ठीक रही तब प्रोपीटे हुआ के इजाज़त दिया सर कि व्हीकल वा सेकेंड सा उड़े करे नहीं तो ऐसे कैसे बोलवा कि ओके ढुआने रही उड़े करके और काटो जूम में चाहना ओके व्हीकल वा ले जाके रिपारी करके NTR ले जाएंगे
1: अच्छा मान लो एक व्यक्ति के घर के पोल्यूशन सुनो के कंप्लीट आलबा जब बोला था कि ओकर वाजे जो जोर से ला म्यूजिक चला हुआ था तो पुलिस जिला एनवायरमेंट के एक्शन कौन सी है में
0: हाँ तो हमने के जब ऐसा कंप्लीट मिला तो हमने के लिए कि टू स्वीट स्वा हमने के गोल सेटन डेटों में चल जाए से देखे जाए से देखी ला सर तो हमने हर सिचुएशन के असेसमेंट कर ला सर इसकी ला म्यूजिक वा फू बाकी नहीं बा हमने के लापारी हमने जो नौ डेसिबल बा उसे नहीं काम किया जा हमने के लापारी डेसिबल हमने के कान हमने के कान से देखी ला सा कि वो 25 मिनट से इसकी टापाजवा उतना फू बाकी नहीं बा ये ढेर फूर रही जे उफिया मेजिया जब आप उसे ला सर तो एटोसिटी वा जो है ना लामिजिकवा के वो मोटे हो जा रहा तो जब जब से वहाँ पर लामिजिकवा ढेर फूर रही तो हमने कॉन्ट्रामोशन ले ला सर हमने कॉन्ट्रामोशन ला एगो न्यूजेंस है ना हमने के लालवा में गला कि मेकिंग नॉइज कोजिंग न्यूजेंस हमने है लालवा में ओके कॉन्ट्रामोशन देप सर फिक्स पेनाल्टी देप सर ओके 10,000 rupees है ओकर नाम ये जिस खाली घर के नहीं है ये प्रॉब्लम अभी कैसे देखबा बिजनेस लोग बा जो नवयुक लोग बा वो लोग अपन लुटुम में और देखबा तो ला म्यूजिक डाल सर कानो बास देखबा अपन बुक्स खोल के देखबा तो लापारी भरल बा ओकर में अब डाल के वो प्लास में डाल के कस के बजे सर नहीं तो सैकिलो सर एगो लॉन्ड्रा में वो आदमी लोग के फांसी के सर एगो न्यूजेंस लिखन तो हई लोग पे भी हमने हई फिक्स पेनाल्टी दिला
2: हई मोटरसाइकिल वो पर
1: हां मोटरसाइकिल
0: वो भी एगो ई उतो एगो बड़ा प्रॉब्लम है अभी के जेनेस लोग बा पारे वो लोग देख बट ओकर मफला है एगो मफला है ओकर लिसाक मामा में वो निकाल लेवल जा वो निकाल दिया सर तो वो बहुत बड़ा सौ दी अब वो लोग भी फांसी के ला तो ओकर भी हमने क्रैक डाउन ऑपरेशन के ला जा जब क्रैक डाउन ऑपरेशन के ला सर तो ओकर भी 10,000 rupees ओकर फिक्स पेनाल्टी है तो ऐसे मोरिस में ऑचे मोरिस में जन्म रहा हमने है सब ऑपरेशन कही ला जा आर पुलिस भी हमने के ए दे कहला लोकल पुलिस
2: रेगुलर पुलिस फोर्स
0: वो लोग भी ए दे कहलन सर तो मिल के है सब ऑपरेशन कहला सर तो ढेर कॉम्प्रोमोशन ले ला
1: और एक व्यक्ति इलीगल डंपिंग के ऑफेंस कर लगता एक जुर्माना कितना बा
0: इलीगल डंपिंग ई दे ढेर दे पान है एगो व्यक्ति जब ढेर थोड़ा ज़्यादा रही

0: 25,000 जब एक एक वयास एक किसे बोल रहा एक वयास कामियों से साटे एक कामियों साटे पेग डिलन तो ओकर जुर्माना वनसैक मिला अब थोड़ा जे कमती रही एक थोड़ा ज़्यादा कमती रही तो सैक मिल रही और डेनियन जो है टॉम मिला कैसे वो आदमी फी में करके उसी आगे में उसी आगे पे कर रहा सिपाही कुछ बूटे प्लास्टिक नीचे फेंक दिला वो टॉम रुपया
1: और एक बात बोलती जो तपास है दुगो लालवा तपास के एगो जो पुलिस दे लॉन्विरोनमेंट सर्वी करे लंसा मान ला जब सुने लंसा तपास वा एगो न्यूजेंस करता देर कस के बा तो कॉन्ट्रावेंशन लेवे लंसा और देखिए ला पारी सर्वी करे ला कैसे मिनिस्टर ला सांते के ऑफिशियल लोग जब वो लोगों के कॉम्प्लेट मिले लाता वो लोग आके एगो ला पारी से मिजिरे करे लंसा अब जब तबिया डेसिबल के बाद बोला जब उतना ओकर लिमिट है डिपासे हो तो वो लोगों से की कॉन्ट्रावेंशन दे
2: तो मिनिस्टर एनवायरनमेंट देने से कौन कौन गतिविधि प्रबंध कर गल बा जबकि कल हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनावा था
1: पहला बार कल सच्चे के कल सैंक जय है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर सा और जैसे सब इंस्पेक्टर सीताराम बोलन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने के रोज के है और जनता भी रोज के कोनो न कोनो कदम उठावेला एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने के और क्लाइमेट फ्रेंडली बने के ये खाली ले सैंक जय खातिर नहीं है सलमा हाई दिनवा सेलिब्रेट कर ला सा जब मैं ज़्यादा सेंसिबिलाइज़े कॉन्शियसाइज़े कर सा और सेतु जैन लोग के जो छोटा छोटा लड़का लोग बा छोटा हुए से चाहिए सिखाए के जब मैं वो लोग बो लाबिचित बो मानिए रही एनवायरनमेंट कॉन्शियस रही अंसा क्लाइमेट कॉन्शियस रही अंसा और एक्शन ली अंसा अब कैसे बोला था काल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से मैं काल ही से मान लिखा ले त्रॉ हुए के पर्यावरण मंत्रालय एगो लॉन्चमेंट कर ले बा एगो कोस्टल वॉकिंग ट्रैक जो ले बुशों पब्लिक बीच से हाउ पास जियोमेट्रिक वर्जीनिया लगे और एगो लॉन्ड्रॉ है पोन नेचुरल और ले सुफ्लेर की रीजन में एगो हेल्थ ट्रैक निखर बने ले बा और हाउ जा पर हाउ रीजन में ढेर प्लांट एंडेमिक बा तो एक इम्पोर्टेंस का है पहला है और कोस्टल रीजन जो है मान लो सबके ज्वाइन करके एगो हेल्थ ट्रैक बनाए के बस फिर हाउ लॉन्ड्रोवा में ढेर प्लांट एंडेमिक बा जो इनके चाहिए प्रोटेज करके और मेम तो जब आदमी लोग चलियन सा लिग्जेसिस करियन सा तो उन लोग के स्वास्थ्य ठीक रही बस फिर हमने के चाहिए ध्यान में रखे कि क्लाइमेट चेंज हमने के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव करेला और क्लाइमेट चेंज के लैंपाक जिस लासौते पर नहीं मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेला क्लाइमेट चेंज कैसे जब हीट स्ट्रेस होला जब ढेर तापमान बढ़ जाला तो आदमी लोग अफेक्टिव होला और जब क्लाइमेट चेंज से जब ढेर डिजास्टर्स होला कैसे इनोडाशन फ्लैश फ्लड सब होला कोई हाला से सो होला तो कोई अपन सब चीज गंवा दे वेला कैसे घर सब डूब जाला पानी से सब पेज होला तो मेंटल स्ट्रेस होला तो वो ला सोते मेंटल वो अफेक्टिव होला तो ऐसे पहला एगो हेल्थ ट्रैक लॉन्से कर लक मिनिस्टर दे एनवायरनमेंट काल ही दूसरा मा एगो कंपनी दे सेंसिबिलाइजेशन कर था ऐसा जैसे हमने के भाई सब इंस्पेक्टर सीताराम बोलक वो लोग खाली एनफोर्समेंट नहीं करे लंसा खाली एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट से काम नहीं चली चाहे दोनों संगे करे के वो लोगों सेंसिबिलाइजेशन करे लंसा बहुत बस कि जब जनता लोग जनियन सा कौन सी अच्छा बात नहीं अच्छा बात तब वो लोग को कदम लियन सर जब मैं मारू काम नहीं करी सर निमन काम करी सर और नॉर्मल एनफोर्समेंट चाहे करे के जो लोग कॉम्पो नहीं हुई तब पर लालवा से भी करे के हमने के जूसर सोल्यूशन नहीं बाप चाहे से भी करे जहाँ से भी करे के चाहे से भी करे के
2: जैसे बोला जाए एनवायरनमेंट की समस्या खाली मिनिस्टर नहीं सकी सुलझावी
1: और पर्यावरण मंत्रालय में एगो डिविजन बा इंफॉर्मेशन एजुकेशन डिविजन वो लोग बहुत सेंसिबिलाइजेशन करते हैं सर पूरा साल सेंसिबिलाइजेशन कर रहे हैं सर कैसे जैन लड़का लोग के यूथ बोली रहा सर जेनिस लोग के वुमेन एसोसिएशन में अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे खातिन सभी सोशल वेलफेयर सेंटर्स में अभी 7 सोशल वेलफेयर सेंटर्स में सेंसिबिलाइजेशन कर रहे थे सर एनवायरनमेंट पर क्लाइमेट चेंज पर और इम्पोर्टेंट है पब्लिक जाने की काहे चाहिए प्रोटेज करे के एनवायरनमेंट काहे चाहिए सगरो साफ सुथरे रखे के और इजेन जो बोली ला सर इजेन वो

0: बहुत इम्पोर्टेंट हाँ बस कि जो इजन नहीं रही तबे देख प्रॉब्लम होला कैसे जहाँ पानी जमा होला तो सकी मलोया डेंग चिकुगुनिया हो जाए
1: बीमारी
0: चिकुनगुनिया हो
1: पैदा
0: जाए
1: हो
0: और
1: जाना।
0: जोन तेरे वाक बा सब कोई बोलेला हमनी के घर के आगे सब चीज साफ सुथरा रखब सा घर बहारब सा आंगन बहारब सा मेघायो जो रही बागा सा हो धो देब सा सलमा सब कचरा जन बा सब सालते जाके आ कोते तेरे
1: दूसर
0: वाक में देपो तो समझ के फेंक देव थोन सा और एक जैसे बोला इलेगल डंपिंग है करना मान ढेर फो है नहीं चाहिए करे के अब जब हौजा पर ही आकोते हुए में 10 मीटर 20 मीटर पर फेंकल बा तो हौजा मुसिक हो तो मुसिक वहाँ तोहरे लगे नहीं आई
1: बिल्कुल ते
0: हौजा पर ही
1: जनता
0: चूहा
1: के
0: हो ता
1: हाँ
0: लेप तो
1: बिल्कुल
0: रोज के प्रॉब्लम
1: मलादी हो
0: हाइयो हो
1: जाए।
0: जाए मलादी हो जाए तो वही से सेंसिबिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्विरोनमेंट पर और सोजमो क्लिमेटिक पर और जन बोले ऐसा एनवायरमेंट स्टीवर्डशिप मान ला जब मैं सब कोई गोलोंगा सैप में बताए सोल्डा दे लॉन्विरोनमेंट बनने से जब मैं लॉन्विरोनमेंट के प्रोटेजे करे के बहुत एक्शन लियन से तो ऐसे बहुत सेंसिबिलाइजेशन होता
1: तो जनता के कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है
2: हाँ बहुत
1: सीताराम
2: जरूरी
1: जी। तो आप जनता से कौन मांग कर पा?
2: हम जनता से मांग करब कि ऐसा ऐसा पहला तो बोलब कि पर्यावरण हमने के जो धरती माँ के हमने के चाहे पोटेजे करे के है पोटेजे करे के चाहे हमने के प्रिजर्वे करे के चाहे और जो आदमी नहीं समझी हम तो लोग से मांग करब कि जो आदमी एक है करता जो अच्छा नहीं करता दिनों से करे के लापुरी से बोला कि कौन प्रॉब्लम बा फोटे हमने से बुलबा तब हमने आप से एक्शन ले हमने तो भर सक खोजिला सा कि मोटोमोशन नहीं लेके सेंसिटाइजेशन जस्ती ज़्यादा करेंगे तो जन आदमी नहीं कहे भाई बस कलावा बोला जन आदमी नहीं समझी का करब बड़ी एक्शन लेके ना
1: ये जो क्रैकडाउन ऑपरेशन 1 महीना में कितना बार होवेला?
2: तो हमने के क्रैकडाउन ऑपरेशन हुआ तो उतने भर सक सब बोले सप्ताह में 2-3 बार होला ज़्यादातर नॉइज पोल्यूशन के जोन बा प्लास्टिक के बा स्मोक के बा है डैम्पिंग के बा है तो चारों के हर हर सप्ताह में आई नॉन स्टॉप है ये होते रहला
1: और मुरिस में कितना जगह में वेस्ट रमासल जाला जो ये हमने के सब ट्रांसफर स्टेशंस बोली ला जा।
2: हाँ देखा पहला शुरू करी सा कि हमने के जोन गवर्नमेंट बा फैसिलिटीज देवेला डोमेस्टिक वेस्ट के डोमेस्टिक वेस्ट आवेलन सा सप्ताह में 1 बार 2 बार आवेलन सा कामियों लेके जाला अब जो दूसर वेस्ट बा उतर चला ट्रांसफर स्टेशन में है सब जितना वेस्ट बा सब ट्रांसफर स्टेशन में जाला तो कैसे वो जरा थोड़ा बहुत जो वेस्ट बा जो नहीं सकबा विदा करे
1: खाली
2: कामियों नहीं जाला
1: मौसिको सब विदाउट कर
2: हाँ सब
1: ना।
2: मौसी को जाला जनेरा में सिर्फ ट्रांसफर स्टेशन सगरू बा लेनो में बाटे बुड्डो में बाटे बुड्डो ट्रांसफर स्टेशन ईस्ट में फ्लैग के डिविजन में बाटे लालुआ में और बोलवी के डिविजन में अथी में बा कैसे बज रहा है पोर्टिस में ओसबॉ
0: रोजवा
2: अब सेंट्रल में लेवा ला ब्रासरी
0: ला बासरी
2: और वेस्टर्न में ला सोमिया और हम एगो ज़्यादा चीज़ बोले खुदे कि कोई भी ये तोहर लगे 500 किलो से कमती हुए से रही 500 किलो से तू सब अपन ने ट्रांसपोर्ट में हाउ ट्रांसफर सिस्टम में जाके सब छोड़े जन फ्लैक्स
1: अपन
2: में
1: ट्रांसपोर्ट
2: अपने
1: में
2: ट्रांसपोर्ट में तो हम लगे वो काट पाओ काट पा तू एगो अपने ट्रांसपोर्ट में और बस 500 काजी काजी सब ये किलो
1: किलो
2: रही जब ज़्यादा रही तो थोड़ा पड़ी
0: कामियों देखे
2: कामियों देखे
0: के
2: के जो उनके वेस्ट परमिट रही
1: अच्छा
2: तो वेस्ट परमिट में तब जाके हम छोड़े सब पर नहीं तो जी ज़्यादा रही तो वो लोग पेमी देखी तो पेमी
1: दूसर
2: देखे हम
1: एरिया के कामियों ने जो
2: हाँ नहीं
1: निकल
2: सकबा
1: पेमित रहेला वो
2: पेमी
1: ही
2: चाहिए तो
1: जाने।
2: देखा तो ऐसा फैसिलिटी हुआ बा फिर कोई अभी हाल ही में पास होते हैं देखते एगो आदमी एगो एगो एगो कोई ना कोई एगो बिस्तर फेंक दे बा एगो मतला सिमा के बोर में तो उतने नहीं छबा ना अब कोई देख बात एगो रेफ्रिजरेटर कोई टूटल बा वो फेंक दे बा हम तो मांग करती कि टूटा सकबा रेफ्रिजरेटर वाले लेके सकबा जाके छोड़ दे अथी में ट्रांसफर स्टेशन में तो लगे वो ट्रांसपोर्ट बा ट्रांसपोर्ट के फेंक के छोड़ हम तो जनता से मांग कर अब कि ऐसा ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने के तो अभी देखा तो सेफ सिटी सकबा हमेरा हमें तो चेके कर अब सर सेफ सिटी में जे ऐसा नाकिजे मिल जाए तो टू का करबा ऐसा नाकिजे के
1: ना
2: और
1: ये
2: यानी
1: वहां
2: बोल
1: पर
2: बल्कि एक्शन
1: एक्शन लेके
2: लेके
0: चाहे लेके
2: बस कि है ला रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नाविक आगे वाइकर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने

0: बा अभी बोल रहा कि चाहना रिस्पॉन्सिबल रह के कि हाई सब हमें के पर्यावरण जो बा एगो जाफे बहुत इम्पोर्टेंट कि चाहना भर सक ऐसा करे के कि हमने के पर्यावरण साफ सुथरा रही और कैसे बोल रहा सबसे निमन सांस ले कैसे भाई बोलक अच्छा रह के हमर हमर मांग ऐसे बा पब्लिक से।
1: और भाई बस कलावा जी, यदि आपको जनता के केवल तीन तीन सरल सुझाव देवे के बा
2: जब पानी बरसेला घर के लाहो के पानी हाउस सिस्टम चियो पर लिखलेला त एगो धोम डाल के पनिया रामास के सेकेंड से साली धोई लोटो धोई आगो से करे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट फ्रेंडली बन गई ना। देजम अभी बहुत अभियान होता है एकदम सेंसिबिलाइजेशन कंपनी होता हवती इलेक्ट्रिसिटी पर बस के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे के बहुत हैवी फ्यूल ऑयल से भी जो ग्रीन हाउस गैस एमिट करेला तो कुरों गैस प्याज नहीं करे के कैसे कुरों गैस प्याज नहीं कर सा एनर्जी एफिशिएंट बल्ब से भी करे के लॉम्पुल इकोनॉमिक जब फ्रिजिडे और कोनो चीज की नत है सा तो चाहे जो कंसोमेशन इलेक्ट्रिसिटी कम है जस्ती एफिशिएंट है कैसे एयर कंडीशनर जो जस्ती एफिशिएंट है फ्रिजिडे जो जस्ती एफिशिएंट है और ग्रेड है आ बी सी डी जिसका ए ले रहेला ए एफ ले चाहे आ ले के जो कुल एवेयर है तो वो डिजा लेबल्ड है वो कमती इलेक्ट्रिसिटी से भी करेला। और त्वाजियम जो मोलेटरी है जो वेस्ट है कचरा सब कोई के चाहे जे भर सक जितना सकियन सा जो बोलेला सा ऑर्गेनिक वेस्ट माना जितना चीज सह सकी सारे कैसे ला क्विजिन में लापो पोम देते बा और कागज के पत्ता बा और जितना चीज बा सब सकियन सा बनान के लापो सब रमास के कंपोस्ट करे के और कंपोस्टास करियन सा तो सब कोई कंपोस्टास करी जेकर आगे फांसीते बा करियन सा तो कौचिते वेस्ट जोन बा आधा से जिमिनिया हो जाए और आधा वेस्ट खाली जाए मॉसिकोज लैंडफिल साइड बस कि मॉसिकोज वो जब जा तब या बोली सा चार पांच गो ट्रांसफर स्टेशन बा हौजा से सब वेस्ट जाला हौजा से जाला मॉसिकोज तो जब मॉसिकोज जाला तो हौजा पर ही जब अथी सौ दो फीस मो टेक्निक जोन है तो हौजा पर ही जब ओकरा थ्रेते होला तो एगो गैस एमिट करेला मीथेन ओहो एगो ग्रीन हाउस गैस है तो ऐसे जब हमने रिड्यूस करब सा जिमिनी करब सा कौचिते देश जो फौजिया करते हैं सा तो हमने एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट फ्रेंडली बन जाब सा और धरती माँ के सकब सा जस्ती प्रोटेज करे और बोली ला सा प्रोटेज माँ मनाते हैं माँ मनाते हैं प्रोटेज नो
1: प्रकृति के हमने चाहे ना हमने साफ सुथरा रखे के तभी तो अंत में कौन दो शब्द बोल बा
0: तो हम भी
1: काय की काल जैसे पर्यावरण दिवस वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस कौन ची बोल बा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ढेर काम कर रहा था बहुत सारी गतिविधि एक्टिविटी हो रहा था
0: तो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का दिन हम जनता से मांग करते हैं कि देखा अभी तो सब कोई गाँव से काट डाटा सक रो हम बोलते हैं युवा का दिन सबको एक गो गाँव से प्लॉटे के देश में एगो गाँव से कि हमने के बहुत इम्पोर्टेंस
1: ट्रीज
0: हाँ प्लॉट ट्रीज देश हम जाफे बोलती कि हमने कोटे एनफोर्समेंट में हम बोलती कि जितना कोई फैसाफे इलीगल करता है सब आखिटे करेगी है डैम्पिंग जोन कर बन जा जो उनके व्हीकिल में स्मोक करता है सब के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गए सेकेंड के बुढ़वा की जनता के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जे सब कोई अपन अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो हमने के जो पर्यावरण बा हमने हमने हमने के चाहना एगो कैसे तुम एगो पाल ली के और दिलाफो तैसा कब से हमने पर्यावरण के खातिर कुछ करे हम जनता से मना होते कि सबको एक मिल के हमने के पर्यावरण के बचाई सर।
1: और आप अंत में दो शब्द
2: जैसे सब इंस्पेक्टर बोल रहे हैं हमने के सब कोई चाहिए मिलजुल के जो पब्लिक है जनता है कोनो न कोनो एक्शन ले के पर्यावरण के सुरक्षा करे के और एगो दैनीय जाफे तभी आप भूला कर ली बोले के हाई पर्यावरण के जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बा आर एगो एक्टिविटी होता सुधनाक वेलनेस पार्क में हौजा पर ही एगो लैंडस्केपिंग फैसिलिटीज बनावल बा जहाँ पर पब्लिक लोग सकी प्रोफिटे करे जॉगिंग करे और एनवायरमेंट के सब एक

0: प्रकार के प्लॉट बा तो विजिट करियन सा तो गवर्नमेंट ढेर फैसिलिटी दिल बा कैसे हेल्थ ट्रैक और डिफरेंट फैसिलिटी दिल बा ला नेचर में कैसे ले पेट्रेन बा सगरो सगरो तो लड़का लोग के चाहे जस्ती सेंसिबिलाइज़ करके एनवायरनमेंट पर क्लाइमेट चेंज पर जब मैं छोटा हुए से बड़ा ली बॉन हैबिट बॉन मैनर और निमन सिटीजन बनियन सा जो
1: जैसे कि सभी इंस्टीट्यूशन में संस्था ओके
0: प्रमोवर करे के सब रिस्पांसिबिलाइजेशन करे के खाली लड़का लोग के नहीं सब कोई के
1: ओए लेकुल से ही शुरुआत हो
0: रहा है क्योंकि जितना एक्शन गवर्नमेंट करी जे पब्लिक के सहयोग नहीं रही ढेर दूर नहीं
1: सकते। तो हमारे दो सम्मानित अतिथियों ने पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व, सरकार की पहलों तथा नागरिकों की जिम्मेदारियों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मतलब हम सब मिलकर के ये सब हमारी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। छोटे छोटे जो कदम है जैसे कचरे का सही प्रबंधक, प्लास्टिक का कम उपयोग, पेड़ लगाना जैसे अभी हमारे जो मेहमान उन लोगों ने बताया पेड़ लगाना, और इससे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, श्री बसकलावा जी जो डिविजनल एनवायरमेंट ऑफिसर है आप इस एनवायरमेंट से, और सब इंस्पेक्टर श्री सीताराम जी जो पुलिस एनवायरमेंट से, और हमारे साथ अंजू उरुसा और निजाम को धन्यवाद देते हुए अगले प्रोग्राम तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार।

0: फिर मैगी आश्रम से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: सभी सुनने वालों को, नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये खबर, देश में एमपॉक्स के इस संदिग्ध मामले का पता चला है। मरीज को SSRN अस्पताल में आइसोलेशन पर रखा गया है। 64 साल का ये मरीज विदेशी है। सैंपल्स लिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी में टेस्ट के बाद पता चल पाएगा कि एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फासिल कुदाबक्कस के अनुसार आज दोपहर

बाद तक नतीजे मिल जाएंगे। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर फ्री और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर बाद 1:30 बजे उनके अपनी कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दे दी थी। हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की। एमईएस की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इसके बारे में पूर्व सूचना दे दी गई है। एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इन परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, फिर भी पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। इस प्रश्न पत्र के लिए सीआईई ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन द्वारा कल एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कई घोषणाएं की गई। 21 जून को सुबह 9:30 बजे सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजा की जाएगी। इसके अलावा 29 जुलाई से अयोध्या रामायण प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। 7 प्रतियोगिताएं होंगी जिनमें नौजवान और मंदिर की मंडलियां भाग लेंगी। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान अगले साल के हिंदू कैलेंडर की तैयारियों पर जानकारियां दी गईं, जो अगले 3 महीनों में तैयार हो जाएगा। गंगा तालाब में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए एमएससीटीएफ द्वारा विशेष निर्देशों की एक सूची भी बनाई जा रही है। विदेश की खबरों में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिससे ईरान में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई चलाने से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोका जा सके। फरवरी में शुरू इस युद्ध के खिलाफ आखिरकार 208 के मुकाबले 215 वोटों के साथ ये बिल पारित हो पा रहा है। फिर भी इसके अमल में लाए जाने पर अभी भी आशंका जताई जा रही है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शुमे रोजलीन कासिमे 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्वंती हरिचन पैदाशी नाम मंगा और जो शोभा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी हरिचन के मकान उनके पति सुभाष हरिचन के मकान शुमे रोजलीन काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन काशी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। रामनारायण रोड को तेज में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बसंती रामचंद पैदाशी नाम चमन और जो सुनीति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे रामनारायण रोड को तेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:11 AM। रारो रोसपेल में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल जो विकास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान रोड रोसपेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

कार्यक्रम है भक्ति धारा। आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं, हमारा सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। श्रोताओं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि हर कर्म में ईश्वर का स्मरण करना है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रही हैं।

जी चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे शक्ति केवल बाहों की ताकत नहीं है, बल्कि मन की दृढ़ता और आत्मा की ज्योति भी है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तभी उसकी असली शक्ति जागती है।

श्रोताओं, जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती है। हर संघर्ष के पीछे छिपी होती है एक नई शक्ति जो हमें आगे बढ़ने का साहस भी देती है। 10:18 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा, तो चलिए आपके लिए चन्न भक्ति गीत इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिन के 11 बजे तक।

0: धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति जीवन की वह ऊर्जा है जो मनुष्य को आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। ये केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि मानसिक, आत्मिक और नैतिक सामर्थ्य का भी प्रतीक है।

श्रोताओ, जब हम भगवान नारायण की बात करते हैं तो जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब वे विभिन्न अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं और मानवता का कल्याण भी करते हैं। भक्तों का ये भी विश्वास है कि जो श्रद्धा और भक्ति से नारायण का स्मरण करता है उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। तो चलिए, कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे रेडियो मॉरिशस पे, और ये कार्यक्रम जो है दिन के 11 बजे तक चलने वाला है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। हम बात करेंगे तुलसी पौधे के बारे में। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वह घर में शांति और पवित्रता का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव बढ़ता है। इसके साथ ही तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी मानी जाती है। तो चलिए, आपके लाए है इस कार्यक्रम में तुलसी चालीसा।

तुलसी की महिमा अपरंपार है। तुलसी पृथ्वी को ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। वेद पुराणों में तुलसी की महिमा के बारे में अनेक कथाएं कही गई हैं, परंतु तुलसी की सबसे बड़ी महिमा है तुलसी के अंदर छुपे हुए अमृत के गुण। जब समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उसे पृथ्वी माता को समर्पित किया गया। जहां अमृत सींचा गया उस स्थान से एक अलौकिक वनस्पति की उत्पत्ति हुई। वो वनस्पति है तुलसी, जिसे हम तुलसी मैया के रूप में जानते हैं।

तुलसी मैया देवताओं को अति प्रिय है। लक्ष्मी का अंश होने के कारण ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों श्री राम तथा श्री कृष्ण को समर्पित की गई कोई पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती। प्रभु को भोग लगाकर जो प्रसाद पाया जाता है उसमें तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी चालीसा के 40 छंदों में तुलसी की इसी महिमा का गुणगान है।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। वैसे सुबह से मेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत धन्यवाद। तो चलिए कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं, आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद उर्दू कार्यक्रम सायरा की पेशकश में हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार, शुभ दिन।

0: देश विदेश की खबरें एक बार फिर आपसे याचना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये खबर, देश में एमपॉक्स के एक संदिग्ध मामले का पता चला है। मरीज को ससियो सागर रामगुलाम नेशनल अस्पताल में आइसोलेशन पर रखा गया है। 64 साल का ये मरीज विदेशी है। सैंपल्स लिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी में टेस्ट के बाद पता चल पाएगा कि एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर गुता बकस के अनुसार आज दोपहर बाद तक नतीजे मिल जाएंगे। अब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए ये खबर, करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर फ्री और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित यानी मैथमेटिक्स के 3 प्रश्न पत्र

0: पत्रों के लीक होने की घोषणा की है। इस बीच मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को इस पुनर्परीक्षा के बारे में पोस्ट और मीडिया के जरिए सूचित किया गया है। एमईएस के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इन परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि उसकी परीक्षा प्रणाली की अखंडता बनी रहे और उसकी योग्यताओं को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में मान्यता मिलती रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में लगातार अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी संदर्भ में कल लर्न एआई प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण लगा, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को तकनीक के माध्यम से नवीन समाधान विकसित करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के अंत में ग्रेड 10 की कैटेगरी में सुडनाक एसएसएस ने अपने स्मार्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट के साथ जीत हासिल की, जबकि ग्रेड 12 की कैटेगरी में लंदन कॉलेज ने अपनी पब्लिक सर्विस एफिशिएंसी परियोजना के साथ विशेष पहचान बनाई। विदेश में इसराइल और लिबनान एक नाजुक युद्ध विराम संधि को रिन्यू करने पर सहमत हुए। इसके तहत लिबनान के कई इलाकों में सुरक्षा स्थल कायम किए जाएंगे, जहां हिजबुल्ला की सभी गतिविधियां वर्जित होंगी। दक्षिणी लिबनान पर इसराइली हमलों में 9 लोगों की मौत के बाद ये तय किया गया। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। Avenue Perruche, Mosselman-le-Maye, Méburg में पचासी साल की 85 years old की श्रीमती सावित्री देवी पैदाशी नाम दुखी और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान Avenue Perruche, Mosselman-le-Maye, Méburg से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो Méburg की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv.
2: कुछ होता है।
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: शम्मे फरोजा।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता. बातें सुनता मैं कभी, पूछता माने उनके, मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता. हर सियाह रात में रोशन हैं हदीसें उनकी, आप ना आते तो ज़माने में अंधेरा होता. मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे. इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ. आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम नातो सलाम और आपके पैगामात. ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अजराहे निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं, और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, और अल्लाह जाहिर किए देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं।

और जब तुम इनके तनासुबे आजा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो तुम इनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं। बुजदिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि इन पर बला आई। ये तुम्हारे दुश्मन ही हैं, सो इनसे मोहतात रहना। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं।

और जब इनसे कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे, तो सर हिला देते हैं और तुम इनको देखो कि तकब्बुर करते हुए रुके ही रहते हैं। तुम इनके लिए मगफिरत मांगो या ना मांगो, इनके आगे बराबर है। अल्लाह इनको हरगिज न बख्शेगा। बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता।

यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहां तक कि वो खुद ब खुद भाग जाएं। हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। कहते हैं कि अगर हम लौटकर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे। हालांकि इज्जत अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते।

मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा पाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है, उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है।

उसी ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब जानता है और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी आगाह है और अल्लाह दिलों के भेदों तक से वाकिफ है।

क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे, तो उन्होंने अपनी करतूत की सजा का मजा चख लिया और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है। यह इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो वो कहते कि क्या एक आदमी हमें हिदायत करेगा, तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया और अल्लाह भी बेनियाज हो गया, और अल्लाह बेनियाज है, लायक हमदो सना है।

जो लोग काफिर हैं उनका एतिकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो, क्यों नहीं? मेरे परवरदिगार की कसम, तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है।

तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हशर के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है।

और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोजख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे और वो बुरी जगह है।

कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, बस अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें।

मोमिनो, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो, और अगर मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहां बड़ा अजर है।

0: सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुख्ल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को नेक नियती से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका कई गुना देगा और तुम्हारे गुना भी मुआफ कर देगा, और अल्लाह कदरशनास है, बुर्दबार है, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे से चलती है, मगर चक्की

ये पाटों में बहुत बारीक पिसता है, तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। नियत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। ज़रा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। बस सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो और कभी मायूस ना होना।

नमाज में ताखीर की ममानियत। हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अली, तीन काम वो हैं जिनमें ताखीर ना करना, नमाज जब उसका वक्त आ जाए, जनाजा जब तैयार होकर आ जाए, बे शोहर वाली औरत जब उसके लिए कोई मुनासिब जोड़ा मिल जाए। बहवाला जामे अल-तिर्मिज़ी शरीफ।

उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ जहाँ नमाज पढ़ो, बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाएगा। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ इस तरह कि ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नुम तुम्हारे उल्टे हाथ की तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है। और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। इंशाअल्लाह ताला फजूल ख्याल से निजात मिल जाएगी।

0: झुकता है जब न्याज से बंदा खुदा के सामने, मिट जाते हैं सारे गुनाह एक लम्हे में, वुजू से चेहरा चमकता है मोमिन का, नमाज पढ़ के वो रब को मनाता है, कज़ा हो जाए तो मिलती नहीं कहीं राहत, ये वो नमाज है मोमिन की जो सुकून देती है। मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:42 होने को हैं, जुमेरात का दिन है, जून की 4 तारीख है और माह हज माह ज़िलहज की आज 17 तारीख है। आप इस नंबर के ज़रिए हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगामात भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं।
1: तर्जुमा, आओ नमाज की तरफ।

जिसकी नमाज़े असर छूट गई, गोया उसका घर और माल सब लुट गया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाज़ें वक्त पर पढ़ी, फज्र और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सब नमाज़ों की हिफाजत करो और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की। जिसने असर की नमाज़ छोड़ दी, उसका नेक अमल ज़ाया हो गया। बहवाला सही बुखारी शरीफ।

आंखों में आंसू और लबों पर है फरियाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूलती नहीं आपके इस शहर की हर याद। मौज़े सामेन, ये खूबसूरत कलाम जो अभी आप समात फरमा रहे थे मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली साहब की आवाज़ में, इसकी फरमाइश हमसे की थी कातकोको से कुरैशा जहालिया, रशीद जहालिया और उनकी बेटी खतीजा ने। आइए बढ़ते हैं आपके चंद पैगामात की तरफ। पोर्ट लुइस से नाजमून ने अपने मरहूम शोहर शकूर और मरहूम बेटे नदीम के लिए एक कलाम की फरमाइश की है, जिसे आप थोड़ी ही देर में समात फरमाएंगे। इसकी तरह इसी तरफ न्यूकोव से फातिमा भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं और एक कलाम की फरमाइश भी की है। इसके अलावा दुआए शिफा की गुजारिश की गई है अम्मी ताहिरून और बेटे मुजफ्फर अली और वालिद रफ़ीक के लिए, कि अल्लाह पाक इन सब को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और वो तमाम हाजियों को हज की मुबारकबाद भी पेश कर रही हैं। कातखुबोन से यास्मीन और हाजरा तमाम हाजियों को हज की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक

तमाम हाजियों की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और अपनी बेटी सुरैया जो कि बीमार हैं उनके लिए दुआगू हैं कि अल्लाह पाक सुरैया को सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए।

इसके अलावा हमें एक और पैगाम भी मौसूल हुआ है प्रोविडेंस से। सादिया एक फरमाइश कर रही हैं अपने भतीजे अरियान हमज़ा के लिए, जिनके इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं, कि अल्लाह पाक उनके भतीजे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और वालदैन को सब्र अंजमील अता फरमाए।

मौज़ सामीन, इस दुआ के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी ख़बरों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: thing.
1: He's a pretty good looking guy. Elvis has
2: he's a

水为主，安心休养，让身体自行恢复，守护身体健康。好，听众朋友，让我们继续来收听好歌送给您的节目。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 4 जून 3:15 बज चुके हैं और आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सो कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? गुरुवार का दिन कैसे बीत रहा है? ऐसे आज जो है धूप अच्छी खिली हुई है, ठंड उतनी महसूस नहीं हो रही है और बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है। और चले यहाँ पर ऐसा ही कोई खूबसूरत सा गाना आप भी सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ जाए 4028085 पर, या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700005 पर और अपनी डेडिकेशंस, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हिना फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ।

आपकी पसंद। चलिए, आपकी पसंद यह प्रोग्राम और एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ते हैं इस अगले गाने के साथ। और अगला जो तराना है लता जी की आवाज़ में है, एक फूल चार कांटे, इस फिल्म का तराना है। और ये जो गाना है अंबिका जी की ओर से फरमाइश आई है और गाना जाता है देविका जी आपके नाम जो वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित कुशराज लचिगादू मामले में अदालत का फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा। साइजेस अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने मामले पर अपना फैसला स्थगित कर दिया। ये मामला 2018 का है, जब कुशराज लचिगादू पर लगभग 33 मिलियन रुपए मूल्य के 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स वाले एक पार्सल प्राप्त करने का आरोप लगा था। वर्ष 2024 में दो नए वाहनों गवाहों के सामने आने के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अब अदालत का फैसला एक दूसरी तारीख को सुनाया जाएगा। वैदिक ज्ञान, सत्य की खोज और समाज सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आर्यसभा मॉरिशस ने जून महीने को सत्यार्थ प्रकाश को समर्पित किया है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए पूरे महीने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और आज पोटली स्थित आर्य भवन में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की गई कि 1 से 5 जुलाई तक मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। साथ ही स्वामी दयानंद के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश की प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। आज हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन मॉरिशस के आसमान में पहली बार किसी विमान ने कब उड़ान भरी थी इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1922 में वाकवा के जिमखाना क्लब मैदान से एक विमान ने पहली बार मॉरिशस के आसमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 104 वर्ष बाद एनजीओ SOS पैट्रिमोन उस भूले बिसरे अध्याय को फिर से जीवित करने और देश की विरासत का हिस्सा बनी इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में कथित ठगी के मामले में आज एक नया घटनाक्रम सामने आया है। मुख्य संदिग्ध 64 वर्षीय हिमराज मोहनौ को पोटली अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत का विरोध किया गया। इसके बाद उसे दोबारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में संदिग्ध धन के लेन देन से जुड़े आरोपों को लेकर एक अन्य व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। FCC के अनुसार अब तक 11 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि करीब 40 अन्य मामलों की जांच जारी है। कथित ठगी से हुए नुकसान का आंकड़ा 30 मिलियन रुपए से अधिक हो सकता है। विदेश स्तर पर इजराइल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुए वार्ता दौरे के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे, जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों को मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रित करने के लिए जो ताकतों के पास उनके पास रहेगा। ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करे और सीमा क्षेत्र

0: से अपने लड़ाकों को हटाई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Mousselman Saint-Henri Saint-Ubéamé, Saint-Ubéamé 27 साल की कृष्णा चकोरी 27 years old की कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह के 10 बजे उनकी दादी सुकन दमयंती के मकान सेंचुबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM स्वराज भवन लेन लालमाची में 89 years old की कलावती मंगो पैदाइश हम लखन, लोग उन्हें विद्यापति के नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी मनीष मंगो के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्डेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius.
3: आपकी पसंद।

चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। घड़ी मिला लीजिए 3:05 यहाँ पर हो रहे हैं। फरमाइशी गीतों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए जो हमें मिल रहे हैं। बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। साथी फिल्म का ये जो तराना है, यहाँ पर इस गाने की जो रिक्वेस्ट है वो आई है अनीता जी की ओर से। मौदाल बेयर से हमारा साथ दे रही है और ये जो तराना होगा मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ों में होगा। यही गाना जाता है अनीता आपके लिए, करुणा आपके लिए, अमृता आपके लिए और मौदाल बेयर के आपके सभी दोस्तों के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए यहाँ पर 3:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं हम इस अगले तराने की ओर। दुश्मन फिल्म का ये जो अगला गीत होगा जगजीत सिंह जी की आवाज़ में होगा। लीलू जी इस गीत की फरमाइश कर रही है, अपने बेटे को याद करते हुए ये गाना उन्होंने मांगा है। यही गाना जो है जाता है सभी रामदया परिवार और सभी दावराज परिवारों के नाम और उन सभी के नाम जो इस गीत को पसंद करते हैं। तो चलिए जगजीत सिंह जी की आवाज़, ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के

0: की पसंद।
1: चलिए हम तो कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर है, 4 बजे तक आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आपका साथ देने वाले हैं। जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है आपकी पसंद ये प्रोग्राम है, ऐसे तो 1-1.5 घंटे प्रोग्राम चलता है, लेकिन इस 1-1.5 घंटे में इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि हम क्या कहें। तो चलिए ये जो अगला गाना है इसकी ओर हम बढ़ते हैं। मुकेश साहब और आशा जी की आवाज़ों में ये अगला तराना रफ्तार फिल्म का है गीत। जयबून जी अपने शौहर कासम के नाम इन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। 4 बेटे हैं, 4 बहुएँ हैं, सभी नाते पोते हैं। जहीरा भी, नगमा, उर्फा, असगर, फैजुल्ला, हिदायत, सभी बड़े ही प्यार से इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर यही गाना जो है जाता है यूनियन पार्क की ज्योति जी आपके नाम। और यहाँ पर प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है, शुक्रिया प्रीति। मयूर है, आदर्श है, वेदना है, विमला, विवेक, अभिष्टा और आप सभी के लिए भी ये गाना चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए हाँ, हम बहते धारे हैं और संसार की बात करें, समय की बात करें, सब कुछ चलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, कोई कभी भी कहीं पर भी किसी के लिए भी नहीं रुकता है। और समय के साथ बहुत कुछ बदलता है और बदलते समय के साथ हमें भी जो है इस बदलाव को स्वीकार करना बहुत आवश्यक होता है ना। चलिए अब बढ़ते इस अगले तराने की ओर। पगला कहीं का फिल्म का ये जो अगला गीत है, तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, खासकर साधना जी आपके नाम जाता है, रिवेदे क्रियोल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना उनके पति देवानंद के नाम, बेटे नीतीश है, कुशल करण, बेटियों के लिए अनुषा है, मनीषा है, दामाद है सतीश, साथ में बहू है काविना, संहिता और जिया, तेजल, गौरव, क्रियान, ताश्विक, सभी जीवन परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। और जितने भी जीवन परिवार हैं, मतलब कि रिवेदे क्रियोल के जीवन परिवार, मौदालबिया के जीवन परिवार, यूनियन पार्क लारोजा और दुबई से भी हमारे साथ जो है जीवन परिवार इस समय जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया साधना जी, ये गाना खासकर आपके लिए भी।

0: की पसंद।
1: यकीनन इन गानों को, इन खूबसूरत तरानों को हम क्या कोई भी नहीं भूल सकता है, है ना। इसलिए तो बार बार कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनकी फरमाइश आए दिन होते रहती है, क्योंकि वो गाने एवरग्रीन हो चुके हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ऐसा ही जो तराना अभी हम चलाने वाले हैं ये भी कुछ ऐसा ही है। अखियों के झरोखे से इस फिल्म का ये जो टाइटल ट्रैक है जाता है विद्या जी आपके नाम, यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है आपकी चाची कुमारी के लिए, बहन सती के लिए, सुरेखा जी के लिए और बबीता जी आपके नाम। और चलिए इसी गाने को सुदेवी जी आपके नाम हम करते हैं। वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, एंजॉयिंग द प्रोग्राम कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यही गाना जाता है दीदी ललिता आपके लिए, कुशल फैमिलीज के लिए, आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालिंगा के आपके पूरे परिवार है, याशना, नीरव, लक्षिता, कृषिका, केशनी, कृषय, सभी राम रतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार, सभी कुवारू परिवार और सभी हृदयी परिवारों के नाम। तो चलिए यहाँ पर खूबसूरत गीतों का सिलसिला जारी है, चलेगा 4 बजे तक, भूलिएगा नहीं। 4028085 है नंबर हमारा, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700 पर।

आपकी पसंद। यकीनन इन गानों को सुनकर दो बातें तो होती ही है, कहीं ना कहीं चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, या तो फिर इन गानों को हम भी गुनगुनाने लगते हैं और गुनगुनाते गुनगुनाते जो है एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यही तो कहते हैं ना, मैजिक होता है म्यूज़िक का, संगीत का, जो हमेशा हमें पॉजिटिविटी देता है, जो हमेशा हमारे मन को शांत करता है, हमें खुशी का एहसास दिलाता है। दुख में है तो गाने अगर बजते रहते तो ऐसा लगता है कि कोई है आसपास, है ना। तो चलिए कोई एक तराना किसी के नाम करना चाहते हैं, बेशक साथ दीजिए हमारा रेडियो मॉरिशस पर आपके पसंद इस प्रोग्राम में। बढ़ते हैं आशिकी फिल्म के इस गीत की ओर। इस समय दिलीप जी कोंगमा से हमारा साथ दे रहे हैं। गाना जाता है संगीता के नाम, योगेश, मनीषा, किश्नवी, कविता, निशान, इंदिरा, दानियन, कोंगमा के इनके पूरे परिवार के लिए। और आशिकी फिल्म का ये तराना कुमार सानू के सभी फैंस के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: ऐसे जीवन में साथी का होना, सहेलियों का होना, दोस्तों का होना, अच्छे रिश्ते नातों का होना बहुत ज़रूरी होता है, हम ये मानते हैं। और अपनों का साथ होता है तो ज़िंदगी का सफ़र और भी खूबसूरत और भी हसीन हो जाता है। जैसे कि अभी के लिए हमारे सुनने वालों का साथ हमें मिल रहा है, तो प्रोग्राम कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, इन अच्छे अच्छे गानों को सुनते सुनते वक्त का पता ही नहीं चलता है ना। तो चलिए, ऐसे में अगला गाना जो है उपकार फिल्म का तराना है, गाना जाता है यहाँ पर माया जी आपके नाम, मोताय ब्लॉन्च से हमारा साथ दे रही है। यही गाना बेटी स्वीटी के लिए, साधना के लिए, सभी परिवार के लिए। और चलिए, उपकार फिल्म का ये जो गीत है, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या जाता है, उन सभी के नाम जो इस गाने को बहुत बहुत पसंद करते हैं।

चलिए आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है, बढ़ते हैं इस अगले गाने की और इसी के साथ जो है आज का हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए जाते जाते जितने भी मैसेजेस हमें मिले हैं जल्दी जल्दी उन पर भी हम नज़र दौड़ाते हैं। यहाँ पर साधना जी, आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वानी दुमन जी, ये गाना जाता है आपके नाम वाकवा से, आप हमारे साथ जुड़ी हुई है और गाना आप की बहन इंदिरा शारदा के नाम, साथ में नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, गीता गजाधर जी, ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं। बड़े ही प्यार से ट्रियोले से सभी बंधु परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको नहीं भूले हैं। भाई माहेन, जाते जाते ये गाना आपके नाम भी हम करते हैं, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, धन्यवाद। ये गाना सभी जगमोहन परिवार के नाम, आपकी ओर से सभी संगीत प्रेमियों के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए भी और खासकर आपकी दीदी मान के लिए। ओके, और यही गाना माला जी आपके लिए भी हम करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपकी पसंद ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जो है वो जारी रहेगी रेडियो मॉरिशस पर। 4 बजे से शुरुआत होगी भक्ति सागर इस कार्यक्रम की, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।

गुरुवार 4 जून घड़ी मिला लीजिए सपेर के 4 बज रहे हैं। एक बार फिर से रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है भक्ति सागर। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बता दें कि आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। और श्रोताओं, ईश्वर की बात करें तो ईश्वर जो है वो हमारे जो है हमें जीवन दिया है, हमें ये सुंदर जीवन

मिला है, हम जिस भी चीज़ की अनुभूति अपने जीवन के अंतर्गत करते हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही कृपा होती है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही देन होती है। और हर एक भक्त का ये प्रयास सदैव होता है कि वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त करे, किसी न किसी रूप से अपने परमपिता परमेश्वर से जुड़ा रहे। और जब भी हम ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो ये हमारे जीवन में जो है हमें बेहतर बनाने का एक प्रयास होता है। अपने आप को एक ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े रहने पर ही तो होता है ना। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करेंगे तभी जाकर तो एक बेहतर जीवन को हम जी पाएंगे, एक अच्छे जीवन का निर्माण कर पाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए। और जहाँ पर अच्छाई एक परिवार में होती है तो वही अच्छाई समाज में भी दिखाई देती है, वही अच्छाई की झलक राष्ट्र स्तर पर भी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अगर सकारात्मक है, वो सकारात्मकता का जो प्रभाव होता है वो सभी ओर दिखाई पड़ता है। तो चलिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की ये जो अपार कृपा है हमारे जीवन पर सदा रहे, और कभी किसी कारणवश यदि हम मार्ग से भटक जाए तो ईश्वर हमारा मार्गदर्शन भी करे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आज के इस भक्ति सागर कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं।

श्रोताओ, भक्ति सागर यह कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन भगवान साई की भी आराधना हम करते हैं और भगवान साई की कृपा आपके जीवन में सदा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा भगवान साई का ध्यान करते हैं।

0: और चलिए इसी के साथ अभी बढ़ते हैं हम इस अगले कार्यक्रम की ओर, भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अब समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम पीयूष धारा की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: तारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रामायण की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हमें गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में हमने देखा कि श्रीराम और उनके भाइयों में एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम था। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, परछाई की तरह एक दूसरे का साथ देते थे। जैसे जैसे चारों भाई बड़े होते गए, वैसे वैसे वे सिंह के समान बलवान और पराक्रमी बनते गए। शारीरिक शक्ति की वृद्धि के

होते गए। श्रोताओं, वाल्मीकि ऋषि कथा को विस्तार देते हुए कहते हैं कि एक दिन महाराज दशरथ अपने मंत्रियों और उपाध्यायों के साथ राज्य संबंधी विषयों पर परामर्श कर रहे होते हैं कि विश्वामित्र जी उनसे मिलने उनके राजभवन तक आ पहुंचते हैं। श्रोताओं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब राजनीतिक विषयों पर राजा दशरथ विचार विमर्श करने बैठते थे, तब राजनीति के विशेषज्ञ उनके मंत्री तो उनके साथ होते ही थे, परंतु मंत्रियों के साथ साथ उन्हें राज्य के हित में सुझाव देने वाले उपाध्याय भी उपस्थित रहते थे। उपाध्याय वेदों के गहन अध्ययन कराने वाले विद्वान को कहा जाता है। प्रजा की भलाई से संबंधित जब भी कोई निर्णय लिया जाता था, तब किसी न किसी शास्त्रज्ञ विद्वान का वहां होना अनिवार्य होता था। यही कारण था कि अयोध्या की प्रजा सुखी थी, जहां राजा एक हाथ में राजनीति और दूसरे हाथ में धर्म को लेकर चलता है, वहां सुख आकर अपना डेरा डाल ही लेता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि स राज्यो दर्शनाकांक्षी द्वार अध्यक्षा नुवाचः शिखरमाख्यात माम प्राप्तम कौशिकम गाधिनः सुतम्। अर्थात जब महाराज दशरथ राज्य संचालन निमित्त विचारों में रत होते हैं, तब महामुनि विश्वामित्र जी उनके द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहते हैं कि हे द्वारपाल, तुम अपने राजा से जाकर कहो कि कन्नौज के प्रतापी राजा गाधी का पुत्र विश्वामित्र उनसे मिलने आया है। द्वारपाल तुरंत यह समाचार महाराज दशरथ तक पहुंचाता है। महामुनि विश्वामित्र के आगमन के बारे में सुनते ही राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर उनके स्वागत के लिए शीघ्र ही द्वार तक जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र जी ब्रह्मा जी का स्वागत करने के लिए दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता के साथ राजा दशरथ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से मिलने दौड़ते हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र विशुद्ध ज्ञान के स्वामी थे, मुनियों में श्रेष्ठ महामुनि थे, धर्मात्मा थे, सदैव धर्मयुक्त वचन बोलते थे। वे कठोर तप करने वाले तपस्वी थे। वे नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उनके तेज का बखान करते हुए वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि सदृष्ट्वा ज्वलितम दीप्त्या तापसम संशीतव्रतम। जब राजा दशरथ विश्वामित्र जी के तेज से प्रकाशित मुख को देखते हैं, तब वे पुलकित हो उठते हैं। कठोर नियमों का पालन करने वाले तपस्वी को देखकर वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगते हैं। जल अर्पण करके वे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। महामुनि विश्वामित्र भी महाराज दशरथ से मिलकर प्रसन्न होते हैं और अपने आने का उद्देश्य बताने से पहले वे राजा दशरथ के परिवार, गुरुओं, मंत्रियों, राज्य के कोष और प्रजा की कुशलता पूछते हैं। एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने के बाद महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ, वामदेव और विश्वामित्र जी को सभा भवन में आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और उन्हें उचित आसन पर बिठाकर उनका सत्कार करते हैं। श्रोताओं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का दर्शन करके राजा दशरथ अपने भाग्य पर इठलाने लगते हैं। महामुनि के तेज से दैदीप्यमान मस्तक को देखकर वे हर्ष से गदगद हो उठते हैं और कहते हैं कि प्रणश तस्य
यथा लाभो यथा हर्षो महो।

उदय तथैव आगमनम मन्ये स्वागतम ते महामुने कंचते परमं कामं करोमि किमो हर्षितः। कि हे महर्षि, आपके आने से मैं अत्यंत हर्षित हूँ। खुशी के मारे मेरे पैर धरती पर टिक नहीं पा रहे हैं। वर्षा मिलने पर जो सुख सूखे खेत को मिलता है और पुत्र पाकर जो सुख निसंतान को मिलता है, वैसा ही सुख आपके आने से मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे राज्य में कोई महोत्सव मनाया जा रहा है। किसी मनचाही वस्तु के मिलने से जिस आनंद का अनुभव होता है, आपके आने से मैं वैसे ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। हे महर्षि, आप मेरे लिए अमृत हैं, आपके चरण मेरे लिए स्वर्ग हैं। मैं अपने सभा भवन में आपका स्वागत करता हूँ। आपका दर्शन करके मेरे ये नेत्र धन्य हो गए हैं। आप ही बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? श्रोताओं, महाराज दशरथ अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पात्र भूतोसी मे ब्रह्मन दिष्टया प्राप्तोसी मानद अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। दशरथ जी कहते हैं कि हे महर्षि, आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि देवता होता है। वह दान का पात्र होता है, सेवा का पात्र होता है। आपके आगमन से मेरा और मेरे राज्य का मान बढ़ गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। आप बस आदेश दीजिए, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना केवल मेरा कर्तव्य नहीं बल्कि मेरा धर्म है। श्रोताओं, महाराज दशरथ 5 महायज्ञों को संपन्न करने में श्रद्धा रखते थे। अतिथि यज्ञ करने में सर्वदा उद्यत रहते थे। उनके राजमहल में नित्य साधु संतों ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता था। उनके मंत्रिमंडल में परामर्शदाता के रूप में वशिष्ठ जी और वामदेव जी जैसे ऋषि उपस्थित रहते थे। ऋषिगण और विद्वान गण राजा दशरथ पर विश्वास करते थे। जब भी उन पर दुख का पहाड़ टूटता था, वे अपनी रक्षा निमित्त अयोध्या के राजा दशरथ की शरण में चले आते थे। वहां उनकी रक्षा होती थी और इच्छा पूर्ण होती थी। अपने पूर्वजों की भांति महाराज दशरथ क्षत्रिय धर्म को निभाने में कभी भी प्रमाद नहीं करते थे। वे नीति द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करते थे। श्रोताओं, मनुस्मृति राजा को वेदवित्ता आचार्यों की मर्यादा में रहने का परामर्श देती है। मनुस्मृति कहती है कि जो राजा वेद में बढ़े चढ़े पारंगत साधु संतों आचार्यों आदि की सेवा करता है और अपने जीवन को उन विद्वानों के निर्देशन और मर्यादा में रखता है, वह राजा निरंतर रूप से अपनी बुद्धि का विकास करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है। श्रोताओं, श्री राम महाराज दशरथ जैसे धर्मज्ञ पिता के पुत्र थे, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्रोता भाई बहनों, विश्वामित्र जी किस कारण राजा दशरथ से मिलने आते हैं और राजा दशरथ की प्रतिक्रिया क्या होती है, इन सब की चर्चा हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए अंजू और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

तो अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष थारा डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, देखते ही देखते सपेर के 4:34 ऑलरेडी यहाँ पर होने को है। भक्ति गीतों का ये जो कार्यक्रम है, चले इस अगले भक्ति गीत द्वारा इसे हम आगे ले जाते हैं। और आप सभी का साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

चलिए, कहते हैं हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने भक्ति को दर्शाता है। कोई ईश्वर के सामने पूजा पाठ करता है, कोई अपने कर्मों को करता है, कोई अपने काम ही को भक्ति के रूप में करता है। और मानव जीवन में कर्मों का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि अच्छे कर्मों का सदा अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का भी फल हमें ही भुगतना पड़ता है। चलिए देखते यहाँ पर सुपहर के 4:40 हो चुके हैं। एक और भक्ति गीत के साथ हमारे इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ जो है भक्ति सागर इस कार्यक्रम के हम लोग लगभग अंत तक आ पहुँचे हैं। 4 बजे से आप हमारे साथ भक्ति सागर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ईश्वर का नाम यूं ही लेते रहे, ईश्वर का स्मरण यूं ही करते रहे, ईश्वर का ध्यान यूं ही करते रहे। जीवन में एक ईश्वर का नाम ही है जो सदा के लिए हमारे साथ रह जाता है। तो चलिए, इन्हीं भक्ति गीतों के साथ, इस अंतिम भेंट के साथ जो है हमारा जो कार्यक्रम है वो समाप्त होने को चला। 5 बजे आप पूनम की प्रस्तुति में सदाबहार गीतों का प्रोग्राम सुन पाएंगे। हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
1: रेडियो मॉरिशियस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस।
1: रेडियो मॉरिशियस,
2: रेडियो मॉरिशियस
3: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशियस।
4: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशियस पर।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार कहते हैं ना कि जब टाइम होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। ये टाइम है 5:08, और कहते हैं कि कभी कभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता ज़िंदगी से, बस कुछ छोटे से प्यारे से पल। और कहते हैं अच्छा सा गाना, अगर गाने में होते हैं अच्छे से और पल भी अच्छा सा होता है तो हमारे जो सुकून भरे पल होते हैं ना वो और अच्छे हो जाते हैं। जो एक घंटा है आपके पसंदीदा गाने चलेंगे इस समय। अगर आपको भी कोई कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028085 पर, अगर आपको मैसेज करना है तो 5251700 पर कर सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:18 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम सदाबहार गीतों के साथ। और ये बहुत ही शाम ऐसी होती है जहाँ पर आपको सिर्फ चाय चाहिए होती है, कुछ गरम गरम कुछ खाने को मिल जाए और साथ में कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आपके दिल को सुकून मिले। और क्योंकि पूरे दिन का थकान इस टाइम होती है, तो इस टाइम में मुझे एहसास है कि इस समय आपको कितना दिल कर रहा होगा कि आपके पसंद के गाने चलें। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं धानी जी, जो कि अपने नातियों को, यानी कि एक नाती जो कि यश है, जो कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है, और साथ में दूसरा हिमेश जो कि मॉरिशस में है, उनके लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जब जब तुम मेरे आगे पीछे रहते हो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच धानी सर आपका इसमें इस प्रोग्राम के से जुड़े रहने के लिए। और कमरेश रानी जी इंडिया से जुड़ी हुई हैं और वो भी इस प्रोग्राम को बहुत ही इंजॉय करी हैं। ललित जी USA से जुड़े हुए हैं और साथ दे रहे हैं इस प्रोग्राम का और कह रहे हैं कि मुझे एक प्यारा सा गाना सुनना है मुकेश की आवाज़ में, तो क्यों ना हो मुकेश की आवाज़ में ये गाना आपके लिए।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: आप जहाँ भी हैं, घर पे हैं या काम पे या सफ़र में, मैं कहती हूँ आप हमारे साथ रहते हैं हमेशा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आपके पसंद के गाने हम चलाते हैं यहाँ पर। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5251705 पर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4028085 पर कर सकते हैं। और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं इब्राहिम जी, और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है। कहते हैं मेरे दिल के एक बहुत ही करीब है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी, और मैं उनके गाने बहुत पसंद करता हूँ। और थैंक यू सो मच आपका कॉल करने के लिए और मैसेज करने के लिए, क्योंकि आपने बताया आपको पसंद है, तो शायद लता मंगेशकर किसको नहीं पसंद हो गया। और मोहम्मद रफ़ी, ये दोनों एक ऐसी जोड़ी है जिनको सभी पसंद करते हैं। तो थैंक यू आपका। और साथ में सुदेवी जी जुड़ी हुई हैं, और एक दो फूल माली की मूवी से एक प्यारा सा एक फूल दो माली से एक गाना सुनना चाहते हैं, और वो भी कह रहे हैं कि उन्हें भी बहुत ही पसंद है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले, चाहे लता मंगेशकर चाहे किशोरदा। ये बात सच है कि ये लोग ऐसे थे जिनके गाने हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, पर मोहब्बत उनसे इतनी हो चुकी है कि हम और कोई गाने सुनना ही पसंद नहीं करते। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। साथ में हमारे साथ राजन जी, ईशिका, राहुल, रंजन, प्रिया एंड सुषमा जी भी जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं आपके प्रोग्राम को। तो बस चलिए इन्जॉय करते हैं ये वाला गाना।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

हंस के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुरादें कोई पा गया।

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
0: ये पर

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: बारिश की बूंदें हों और सदाबहार गीत हों और शाम का टाइम हो तो सच में ये गाने भी यादगार बन जाते हैं और ये मोमेंट्स जो इस समय आप अपने घर में इंजॉय कर रहे होंगे वो भी। तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता जी, करुणा जी और अमृता जी और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं ये प्रोग्राम को। साथ में ही सुनीता जी ने कहा कि जब आपने पकौड़ों की बात की तो मेरे मुँह में भी पानी आ गया और मैंने सोचा क्यों ना बना लिया जाए। तो उन्होंने भी एक बैटर की जैसे वो बना रही हैं, उन्होंने उसकी पिक्चर भी सेंड की है और कहा कि भाई देखिए मुझे बड़ा मुँह में पानी आया तो मैंने सोचा चलो मिंट चटनी के साथ में ये बना लिया जाए। और सभी लिसनर्स को आप कहना कि ये शाम बहुत ही खूबसूरत लग रही है क्योंकि इस समय एक तो सदाबहार गीत चल रहे हैं और साथ में बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। तो एक किसी ने कहा है कि अगर आप शर्मीली मूवी का एक प्यारा सा गाना चला दें तो बिल्कुल हम चलाने जा रहे हैं आप सबके लिए।
0: जिंदगी के

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:45 हो चुके हैं दोस्तों। बस इतना कीजिए कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए और इन नगमों को बस अपने दिल में बसा के आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अभी पूरी रात पड़ी है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, अभी घर के अंदर कल की प्लानिंग करनी होगी, तो इन्जॉय कीजिए ये गाने। साथ में हमारे साथ लीला जी जुड़ी हुई हैं बौशहरी से और कह रही हैं कि मेरा दिल तो कर रहा था कि कोई गाने की फरमाइश करूं, पर फिर दिल का कहा नहीं नहीं इतने अच्छे गाने पहले से ही चल रहे हैं तो मेरा दिल नहीं है, बस मेरा दिल किया पूनम जी आपको फ़ोन करने का। थैंक यू सो मच आपका, आपने कॉल किया। उसके साथ में सूरज शर्मा साजदा जी भी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं गाने

0: बहुत मस्त चल रहे हैं, तो बस मेरा भी दिल नहीं कर रहा कुछ कहने का, बस मैं सुनना चाहता हूँ। सो नाइस, आप सबका धन्यवाद। साथ में प्रेम जी इंडिया से जुड़े हुए हैं, अमित और एलिना भी जुड़े हुए हैं उनके साथ में, और भी हमारी माला जी बोबासन से जुड़ी हुई हैं और वो भी एक गाने की फरमाइश करी है। तो बस हम आपको सुनाते जाएंगे आपके पसंद के गाने, पर हम इतना कहेंगे अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, बस ये गाने सुनिए।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
3: नहीं, कुछ नहीं।
2: कुछ नहीं।

0: दोस्तों मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही सदाबहार गीतों का साथ निभाते रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम। अब मुझे दीजिए इजाजत और 6 बजे आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार। हमारे साथ इस समय साधना जी जुड़ी हुई हैं, सुनीता जी जुड़ी हैं, शोभा जी जुड़ी हैं। इंजॉय कर रहे हैं आपके गाने।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर डालती है। पुतदो में नई सौर्य ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन, करीब 3,400 घरों को मिलेगी बिजली। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम। मॉरिशस में कई बिलियन रुपए के नए निवेश की संभावना है। ईडीबी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दी मंजूरी, निवेश बढ़ाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। मॉरिशस में एमपॉक्स के स्थानीय संक्रमण का पहला मामला दर्ज, 64 वर्षीय व्यक्ति आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया संपर्क खोज अभियान। हुसराज लचगादू मामले में अदालत का फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मॉरिशस में पहली हवाई उड़ान के 104 वर्ष, 1922 की ऐतिहासिक घटना को फिर जीवंत करने की पहल। विदेश स्तर पर इजराइल और लेबनान युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत, दक्षिणी लेबनान में विशेष सुरक्षा क्षेत्रों की योजना, लेकिन सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस में रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। पुतदो में आज एक सौर्य ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, जो लगभग 3,400 घरों को बिजली देने में सक्षम होगी। एमसीबी ओमनिकेन और कलिसे इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार इस परियोजना पर 250 मिलियन रुपये का निवेश किया गया है। खास बात ये है कि यहाँ बिजली उत्पादन के साथ कृषि गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, बिजली उत्पादन में अक्षत ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% तक पहुँचाना और 2035 तक कोयले के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना है। मॉरिशस में आने वाले समय में कई बिलियन रुपये के नए निजी निवेश देखने को मिल सकते हैं। निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार प्रदान करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड यानी ईडीबी ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल को और अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही देश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए और अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से कई नई पहलों की घोषणा की गई है। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस पूरे महाद्वीप में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिक मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने में सफल रहा है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र की आगे की वृद्धि के लिए कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। करुणा लालू।
1: अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 में मॉरिशस 5वें स्थान पर है, यानी मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और टूनिशिया के पीछे। ये वर्गीकरण देशों की विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मूल्यवर्धित उत्पादन विकसित करने की योग्यता के आधार पर हैं। रिपोर्ट में मॉरिशस की कई विशेषताओं को उभारा गया, जिनमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, अनुकूल व्यवसाय वातावरण और अर्थव्यवस्था का विविधीकरण शामिल हैं। रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि मॉरिशस उच्च मूल्यवर्धित विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर दृष्टि सिंह रामदेनी कहते हैं, हम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुकूल हैं, खासकर डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण को लेकर। अनेक सेक्टरों में टेक्सटाइल से परे फूड एंड बेवरेजेस को लेकर भी, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में है।
2: फूड एंड बेवरेजेस au-delà de tout ce qui est traditionnel textile ainsi de suite।
1: हालांकि मॉरिशस महाद्वीप की सबसे अधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट कई चुनौतियों की ओर भी संकेत करती है। अंतर अफ्रीकी व्यापार बहुत कम है, धीरे धीरे प्रगति हो रही है, एक संभावना के तौर पर देखना है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह एक सतत मंच की जरूरत
2: है।
1: जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2010 में 14.2% से घटकर 2024 में 10.8% हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, जिससे इस क्षेत्र

0: क्षेत्र के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है।
1: Tout ce qui est l'espace fiscal, l'espace de support financier, l'infrastructure.
0: Fiscal aur vittiya samarthan, mool dhancha aadi par phir se gaur karna chahiye, SME ko kendra mein rakhna chahiye, nivesh ko lekar unhe aage badhna chahiye, vishesh aarthik zone se judna chahiye.
1: Au niveau ban zone économique spéciale.
0: अब चुनौती ये होगी कि बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच इस सकारात्मक गति को कैसे बनाए रखा जाए।
2: मॉरिशस में एमपॉक्स के स्थानीय संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 64 वर्षीय विदेशी मूल के एक व्यक्ति में इस वायरस की पुष्टि हुई है। उसे पॉपलिमुस स्थित सरश्रीसागर राम गुलाम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संपर्क खोज अभियान शुरू कर दिया है ताकि संक्रमण के स्रोत और संभावित संपर्कों का पता लगाया जा सके। अशिता रघु।
3: ये स्थानीय स्तर पर एमपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है। पूर्व में दो आयातित मामले थे। व्यक्ति एक निजी क्लिनिक में त्वचा पर समस्या की शिकायत के साथ आया था, जहां वहां के डॉक्टर ने उसे एक त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट के यहां भेजा और डर्मेटोलॉजिस्ट को संदेह हुआ कि ये एमपॉक्स हो सकता है, जिसके बाद तुरंत मरीज को SSRN अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। वहां भी उसे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जांचा और उसके खून का एक सैंपल कॉन्डस अस्पताल भेजा गया। 2 बजे के करीब नतीजे प्राप्त हुए, जिससे ये पुष्टि हुई कि ये एमपॉक्स का मामला है।
4: Dermatologue également, et nous fait une frottine, un échantillon de peau qui nous envoie au laboratoire de Candos. Et là, les résultats sont tombés vers 2 heures, c'est confirmé MPOX. Monsieur en question, lui habite à Maurice pendant presque une année. Donc...
3: संक्रमित व्यक्ति पिछले 20 सालों से मॉरिशस में रह रहा है। ये एक स्थानीय मामला है। हम सक्रिय रूप से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये एमपॉक्स से संक्रमित हुआ है, क्योंकि ये नजदीक के संपर्क से ही फैलता है।
4: Pustule, la croûte, ça c'est ben un problème qui nous commence à gagner dans la main et nous gagne ça au visage, mais aussi dans ma partie privée.
3: सिम्टम्स में त्वचा की समस्या जैसे पुटिका, सूखे व उखरे दाने होने लगते हैं, जो हाथ, चेहरे व अंतरंग में हो सकते हैं।
2: सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित कुसराज लच्छीगादू मामले में अदालत का फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा। असाइजेस कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने मामले पर अपना निर्णय स्थगित कर दिया। ये मामला 2018 का है, जब कुसराज लच्छीगादू पर लगभग 33 मिलियन रुपये मूल्य की 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स वाले एक पार्सल प्राप्त करने का आरोप लगा था। वर्ष 2024 में दो नए गवाहों के सामने आने के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। सुनिए।
0: पिछले मंगलवार को असाजिस कोर्ट में न्यायाधीश लक्ष्मी प्रसाद अजायब ने कुशराज लच्छीगादू के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अपना फैसला नहीं सुनाया। ये मामला 27 फरवरी 2018 का है, जब कुशराज लच्छीगादू ने 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स का एक पार्सल अपने कब्जे में लिया था, जिसकी कीमत का अनुमान 33 मिलियन रुपये का लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने थ्रियोले स्थित कुसराज लच्छीगादू के कथित गुप्त ड्रग प्रयोगशाला पर छापा मारा। हालांकि फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री की जांच में कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला। कुसराज लच्छीगादू 23 अप्रैल 2018 को उस समय चर्चा में आया जब वो बाकवा डिटेंशन सेंटर से कुछ पुलिसकर्मियों की मदद से फरार हो गया था। उसके खिलाफ चल रहा मुकदमा मार्च 2022 में समाप्त हो गया था और अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। 2024 में ये मामला फिर से खोला गया, जब 2 गवाह सामने आए। उन्होंने कथित रूप से दावा किया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने कुसराज लच्छीगादू को गलत तरीके से फंसाया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अदालत अपना फैसला ऐसी स्थिति पर सुनाएगी जिसकी सूचना संबंधित पक्षों को परिपत्र के माध्यम से दी जाएगी।
2: आज हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन मॉरिशस के आसमान में पहली बार किसी विमान ने कब उड़ान भरी थी, इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1922 में वकवा के जिमखाना क्लब मैदान से एक विमान ने पहली बार मॉरिशस के आसमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 104 वर्ष बाद NGO SOS पैट्रिमोन उस भूले बिसरे अध्याय

0: को फिर से जीवित करने और देश की विरासत का हिस्सा बनी इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सुनिए ये विशेष रिपोर्ट।
1: बाकुआ में जिमखाना क्लब के इस मैदान से पहली बार मॉरिशस से एक विमान ने उड़ान भरी थी। ये घटना 1922 की है। दक्षिण अफ्रीका के मेजर हुनेट ने इस विमान का संचालन किया था। उन्होंने इस विमान बायप्लेन को इंग्लैंड से समुद्री मार्ग के जरिए मॉरिशस तक पहुंचाया था। उस समय जिमखाना क्लब बरतानी सैन्य मुख्यालय का हिस्सा हुआ करता था। जिमखाना क्लब के अध्यक्ष रवीन बिनेश्री सिंह ने कहा, ये क्लब अंग्रेजों का था जो गोल्फ खेलना पसंद करते थे, इसीलिए साफ जमीन की जरूरत थी। विमान ने इस क्लब की जमीन का इस्तेमाल किया। 2 जून को सफल परीक्षण उड़ान के बाद इस विमान ने 4 जून को आसपास में कई चक्कर लगाए। 6 जून के लुसियानीय समाचार पत्र के संस्करण में उल्लेख किया गया कि विमान ने भीड़ की जोरदार तालियों और उत्साहपूर्ण स्वागत के बीच बड़ी सुंदरता से उड़ान भरी। आज इस ऐतिहासिक क्षण का कोई भौतिक चिन्ह बाकी नहीं। इसी स्थिति को बदलने के लिए गैर सरकारी संगठन SOS पात्रमान ने पहल की है। क्रिस्टोफ लेहू ने कहा, प्रेजेंस में एक ऐसा विमान है जिसके मालिक के मॉरिशस आने के बाद देहांत हो गया। विमान हवाई अड्डे पर है, विमान को लेकर यहां लाना चाहते हैं पुलिस की निगरानी में, ताकि भावी पीढ़ी के लिए स्मृति की रक्षा की जा सके। ये स्मृति संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ताकि मॉरिशस के विमानन इतिहास का ये अहम अध्याय समय के साथ भुलाया न जाए।
0: वैदिक विचारों, सत्य की खोज और समाज सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आर्य सभा मॉरिशस इस पूरे जून महीने में सत्यार्थ प्रकाश से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रही है। आज पोटवी स्थित आर्य भवन में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बताया गया कि सत्यार्थ प्रकाश जयंती 12 जून को मनाई जाएगी। पहली जून से शुरू हुई प्रवचन और विचार गोष्ठियों की श्रृंखला 5 जुलाई तक आर्य समाज के विभिन्न शाखाओं में जारी रहेगी। साथ ही स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश अर्थात सत्य का प्रकाश ग्रंथ की प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। पूजा सुकालू की रिपोर्ट पेश है।
2: आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन और शिक्षाओं को इस पूरे महीने विशेष रूप से उजागर किया जाएगा। इस अवसर पर देश भर में आर्य समाज की विभिन्न शाखाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक प्रेस सम्मेलन में इस पूरे महीने के दौरान आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ दी गयी।
3: सत्यार्थ प्रकाश इसी ग्रंथ के माध्यम से मॉरिशस में प्रकाश फैला है। अंधविश्वासों की जड़ को काटने का पूरा पूरा प्रयास किया गया और विद्या का जो प्रकाश है वो घर घर तक पहुंचाने का हमने प्रकाश प्रयत्न किया हमारे पूर्वजों ने, और इस समय वर्षों से आर्य सभा यह कार्य कर रही है।
2: इस विशेष अवसर पर भारत से आचार्य धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी आध्यात्मिक सभाओं और विचार विमर्श सत्रों में प्रवचन देंगे।
4: सत्यार्थ प्रकाश वह कालजयी ग्रंथ है जिसने न केवल भारत में अपितु विश्व के तमाम देशों के अंदर एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति की स्थापना की है। और स्वामी जी को इस ग्रंथ के लिखने में लगभग 3-3.5 मास का समय लगा।
2: ये कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य के प्रकाश पर केंद्रित है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती की एक महत्वपूर्ण कृति है। इस अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां भी देश भर में वितरित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वामी दयानंद के विचारों और उनके संदेश से परिचित हो सकें।
0: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम में अभी तक उसकी ठंडक पूरी तरह महसूस नहीं हो रही है। मॉरिशस में तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम का ये बदला हुआ रुख जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों की ओर संकेत करता है, जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों की तरह अब हमारे इलाके में भी साफ दिखाई देने लगा है। सडेक के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों के का एक संघ अपने सिकम पेंशन योजना में बदलाव की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि इस मुद्दे से करीब 300 जस

कर्मचारी प्रभावित है। मॉरिशस लेबर कांग्रेस से जुड़े इस संघ ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी मांगें सामने रखी, साथ ही उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्णय लिया। जब कोई कंपनी रिसीवरशिप के तहत जाती है तो कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए, ये कहना है एफटीयू यानी फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष आत्मा शांतो का। आज पोर्टली में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने रिसीवरशिप के तहत चल रही चार कंपनियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच और तटीय इलाकों में प्रस्तावित होटल परियोजनाओं का मुद्दा आज फोरम सिटोयन लिब्र की प्रेस वार्ता में प्रमुखता के साथ उठाया गया। बेल विलेज में आयोजित इस बैठक के दौरान रोर आयान ने होटल परियोजनाओं को दी गई मंजूरियों और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल खड़े किए। और अब बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सैन्य भागीदारी समाप्त करने की मांग की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रस्ताव को कुछ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन मिला है, जबकि इस सप्ताह सीनेट में भी इस पर चर्चा और मतदान होने की संभावना है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है युद्ध जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की भूमिका को बनाए रखना आवश्यक है। इजराइल और लिबानन ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत दक्षिणी लिबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रण केवल लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस के पास होगा। ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करे और सीमा क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए। चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान है कि आज रात को सेंट्रल प्लाटो पर रहकर कुछ बरसात हो सकती है। देर रात को और कल सुबह के दौरान मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे। कल दोपहर बाद देश के उत्तर पश्चिम उत्तर और सेंट्रल प्लाटो पर रहकर बरसात होगी और कभी कभी जो काफ़ी तेज़ भी हो सकती है। रात को हल्की हवा बहेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय 6:39 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। ब्लैकबर्न रोड कोंगोमामी 50 साल के 50 years old की देवानन रामरिचा जिन्हें लोग लुलु के नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके भाई मंगल रामरिचा के मकान कोंगोमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट नून। Mosselman Prudhomme Rivière des Anguilles, 83 साल की 83 years old की जयमुंती लखन पैदाइश नाम लक्ष्मण, लोग उन्हें जामुन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे सुरेश लखन

उनके मकान खिविया देजों की से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। कलपुलेन मैडम लोलो रोजबेल में 52 साल के श्री धनंजय लाला की मृत्यु हो गई है।

दसोई की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोकुल, लोग उन्हें सुगिन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के बल्कि शनिवार 6 जून को दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान काठोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 6 जून एट 9:30 PM। जिल्फा लेन सेंट जूलियन दुतमों में सेंट जूलियन दुतमों 109 साल की 109 years old धनमतिया सुको पैदाइश नाम रतन, लोग उन्हें मुना के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी कल दोपहर बाद 1 बजे उनकी बेटी अनीता सुको के मकान सेंट जूलियन दुतमों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौतवाल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। बाउंड्री रोड रोजिल में 77 years old की श्रीमती धनवंती देवी रामचंद की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पेम, लोग उन्हें रेखा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। स्वराज भवन लेन लालमाची में 89 years old की श्रीमती कलावती मंगर पैदाइश नाम लखन, लोग उन्हें विद्यापति के नाम से अधिक जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मनीष मंगर के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौद्रमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मोसेलमा सेंट ओरी सेंट हुबेयर में 27 years old के कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी दादी के मकान सेंट हुबेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट सिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मेबर्ग में रू डी क्रियोल मेबर्ग में 55 साल की 55 years old के श्री बिसुंदत रामसन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कुलू के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ शांति रामसन की मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। ला रू लोरिलियर वेडर में पोस्ट ऑफिस के करीब 87 years old के भगवत प्रसाद झुमक की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दयानंद के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान वैद्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। एवेन्यू पेरुश मोसेलमा ले माए मेबर्ग में 85 years old के 85 साल की सावित्री देवी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दुखी, लोग उन्हें साबित के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान एवेन्यू पेरुश मोसेलमा ले माए मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रामनारायण रोड कोटेज में 75 साल की 75 years old की बसंती रामचंद की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चमन, लोग उन्हें सुनीति के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान कोटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोटेज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। बेक्सले हीफ कैंट यूके में 74 years old के जयराज जीवन की मृत्यु इंग्लैंड में हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे मॉरिशस में पहले टागोर रोड फोंचिसा के रहने वाले थे। उनकी अर्थी कल यूके के समयानुसार वहीं पर सुपहर 3 बजे उठाई जाएगी। रॉयल रोड ग्रैंड रिट्रेट में 72 साल की 72 years old की अंजलि रुकमिन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दमरी, लोग उन्हें रजनी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे उदय रुकमिन के मकान ग्रैंड रिट्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौद्रमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा यह विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सैंपल तथा फिनिक्स के ग्राहकों को, विशेषकर जो लोग रहते हैं गुड सैंपल, बिशाल लेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड, सोमिल लेन, एडगर क्यूरिन एवेन्यू, मोसिलमा नोवेल, एम्पासा गुमानी, बागोबिन लेन का एक हिस्सा, उस्मान एवेन्यू, अलीजाक स्ट्रीट, एम्पासा लोरियों, मोसिलमा शाम्बो, मोसिलमा सुब्राती, किनिंग लेन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 CWA सैंपल तथा आसपास के रहने वालों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से कल शुक्रवार 5 जून 2026 को दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। मरम्मत कार्यों के पूरा होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्य सभा मॉरिशस शुक्रवार 5 जून शाम 3:30 बजे विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है प्लेनमाया आर्य समाज में, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित महान वैदिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। शुक्रवार 5 जून को शाम 6:30 बजे लावांचा के झरनाथ शिवालय में मासिक काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है।

0: This is Radio Marches.
1: Assalamu alaikum. Kimchi Mauritius.
2: Namaskar.
3: Shrotarandariki hrudayapoorvaka namaskaram.
4: Ungal anaivarukkum vanakkam.
5: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
6: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

सादर प्रणाम श्रोताओं, ईश्वर पर विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए एएम टुडे डो मॉरिशस के इस पावन भक्ति कार्यक्रम भजे प्रभु का नाम में हम ईश्वर को समर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे जीवन के भागदौड़

चिंताओं तथा चुनौतियों के बीच जब मन थक जाता है, तब प्रभु का स्मरण एक मधुर छाया बनकर हमें शांति प्रदान करता है। ईश्वर का नाम केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है जो निराशा में आशा तथा अंधकार में प्रकाश का संचार करती है। आइए आज के इस प्रोग्राम में भक्ति के रंग में रंगते हैं और उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। सबसे पहले गणेश वंदना।

जहाँ श्रोताओं जिस मन में प्रभु का वास होता है वहाँ भय, चिंता तथा निराशा टिक नहीं सकते। मनुष्य अपने जीवन में अनेक सहारे खोजता है, परंतु सबसे अटूट सहारा ईश्वर का होता है। जब सारे मार्ग बंद दिखाई देते हैं, तब प्रभु कृपा का एक द्वार अवश्य खोलते हैं। हमें कभी भी अपने कर्म तथा प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से अधिक सुंदर होती है।

आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय की सच्चाई से स्वीकार होती है। कहा जाता है कि जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसकी क्षमता भी बढ़ा देते हैं। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, मन में यह विश्वास बनाए रखें, जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है तथा जो प्रभु करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं।

जहाँ श्रोताओं, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चाई, सेवा तथा सदाचार। आज के समय में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, परंतु मानसिक शांति कम होती जा रही है। प्रतिदिन कुछ क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करें, सुबह की शुरुआत ईश्वर के धन्यवाद से करें तथा रात को उनकी कृपा का आभार व्यक्त करें। धन से सुविधा मिल सकती है, परंतु शांति केवल प्रभु भक्ति से प्राप्त होती है।

श्रोताओं, जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सफलता है, तथा जहाँ प्रभु है वहाँ सब कुछ है। तो आज के इस कार्यक्रम भर से प्रभु का नाम में हम विराम डालते हैं। आशा है कि शक्ति, संगीत तथा सकारात्मक विचारों से सजी यह प्रस्तुति आपके मन को शांति तथा नई ऊर्जा प्रदान कर सकी होगी। अनुमति लेने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे मन में सदैव प्रेम, करुणा, विनम्रता तथा सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखें। हमारे जीवन को सेवा, सदाचार तथा भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। जी हाँ, अभी लेते हैं आपसे अनुमति। शुभ रात्रि,

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में हम आप तमाम सामीन का खुलूस व मोहब्बत के साथ खैर मकदम करते हैं। दिल से दुआ है हमारी कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से रहें। सामीन मोहतरम, आइए महफिल शब का आगाज़ इस हमद से करते हैं।

अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे, ख़ुसूसन रमज़ान में आपकी सखावत बहुत बढ़ जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मोहताजों की बहुत मदद फरमाते थे, हमें भी सखावत और फैयाजी इख्तियार करनी चाहिए।

अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को भूख की हालत में खाना खिलाया, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फलों में से खिलाएगा। भूखों को खाना खिलाने का अज्र जन्नत की नियमतों की सूरत में मिलेगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी ज़ाया नहीं करता जो उसकी मखलूक पर रहम करते हैं। सामीन कराम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। खुदा से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वह तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और जो बीमार हैं उन्हें कामिल शिफा अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं दुआया कलिमात के साथ आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का रजाना पेश करते हैं। इसी के साथ महफिल शब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही

0: Park Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं, बुरे लोग हैं हा?
5: और इतनी सी बात के लिए हमारी बहन से शादी नहीं करेगा?
6: है कोई घर में बहन, बेटी, भाई, कोई भी शादी के लायक
5: है ना? लड़की संजना बहन।
7: और हमारे से ज्यादा शरीफ खानदान आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। प्लीज
5: वेलकम।

रविवार 7 जून को NBC 3 पर दिन के 12 बजे स्पेशल फादर्स डे हिंदी फीचर फिल्म वेलकम 2007 की ये मूवी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म वेलकम

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: जी हाँ, आज 4 जून 2026 बीफे के रात के 9:03 होल बा और हम किरण आप सबको के स्वागत करत है। हमार करजोर नमस्ते स्वीकार करा ये उम्मीद के साथ कि आज के दिन आप सब कोई के बहुत अच्छा से बीतल और आज के जो शाम है, आज के जो रात है, बहुत ख़ास है। कहे कि काल शुक्रवार है और सुख के दिन के इंतज़ार सब कोई के रहेला। कहे कि वो इस सप्ताह के अंतिम दिन है और सप्ताहांत चलाई और एक बार फिर परिवार के साथ, अभी जैसे सुनला फादर्स डे आवता तो एक बार फिर पारिवारिक माहौल बंध जाए और ऐसन में एकर से अच्छा का रही कि आज के शाम एक बार फिर खुशियों के साथ आपके फरमाइशी गीत के साथ एगो सुंदर महफिल सजावब जा अभी से रात के 11 बजे तक। और ये जोन प्लेलिस्ट बनल बा आपके जोन पसंद है ओकर पर ही आधारित बा, लेकिन जैसे जैसे आपके फ़ोन कॉल्स आए, जैसे जैसे आपके नवा फरमाइश आए, वैसे वैसे ये प्लेलिस्ट के हम बदल ले जाब और आपके हर एगो जोन फरमाइश रही, हर एगो जोन मांग रही ओके पूरा करे के पूरा कोशिश रही। तो चला शुरू करी जा आपके ही मनपसंद गीत के साथ, सुदेश बोइजू के आवाज़ में आपके मनपसंद गीत।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: रात के 9:14 होलबा और आप लोग के फोन कॉल्स आवता एक के बाद एक, और जितना भी गीत के आप लोग मांग कर लेहा वजह वो सब गीत अभी चली ता हमने संगे जुड़ल रहिया। और जितना कोई के भी फोन कॉल्स अभी हम नहीं सका थे लेवे ता थोड़ी देर में आप सब कोई के फोन कॉल्स लेब, काहे कि बहुत ज्यादा फोन आवा था ता थोड़ा धीरज धरा, धीरे धीरे हम सब कोई के फोन कॉल्स लेब और आप सब कोई के गीत चली। ये बखत 9:14 होलबा और भोजपुरी तड़का चला था आज बिफे के रात हमेशा के तरह 9 से 11 बजे तक।

रात के 9:23 होलबा और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सब कोई के आपके फ़ोन कॉल्स खातिर। और काफ़ी शिकायत भी मिला था कि आपके फ़ोन कॉल्स उठावे में देरी हुआ था, कहे कि एक के बाद एक, बल्कि एक ही हालात 6-7 गो फ़ोन कॉल्स जब आवेला तो कैसे सकब से सब एक को लेवे। लेकिन सच में पूरा कोशिश रहेला हमने के कि आप सब से बात करब जा, आप सबके जो गीत बा उ प्रोग्राम में शामिल करके ये प्रोग्राम के और सुंदर बनावब जा, कहे कि ये प्रोग्राम आप लोग के है, आप लोग के पसंद पर चलेला। और साथ में हमने के जितना भी भोजपुरी कलाकार बा उ लोग के जितना चहेता चहेती हवन जा, हमने चाहिला जा कि उ लोग के बढ़ावा मिली, उ लोग के बढ़ावा दियन जा। और अगला जन गीत चली बसंत सुपोल की आवाज़ में, एगो बहुत खुशनुमा गीत जोन हर घर में खुशहाली के समा बांध देवेला, ख़ास तौर पर जहाँ पर अभी जन्मदिन चलता। आप इशारा समझ गल हुई बा कि यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के गीत चले होला बा। जितना कोई के आज जन्मदिन बा, जितना कोई के जन्मदिन काल रहल या अभी से लेके हमने के मुलाकात हुए तक, जितना कोई के घर में आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसन, जितना कोई के जन्मदिन बा, हमर ओर से आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में हमेशा खुशी रही, आपके जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रही और आप सबके जीवन में खुशहाली अनब, रोशनी अनब, ऐसा शुभकामना के साथ ये अगला गीत चली। और एक फरमाइश ख़ास तौर पर कर ले हवन विजय बेनी प्रसाद जी, आज उनकर धर्म पत्नी श्रीमती संगीता बेनी प्रसाद के जन्मदिन बा और घर में सब कोई मिलजुल के ये जन्मदिन के खुशी बाँटत हव जा, खुशी मनावत हव जा। संगीता जी के उनकर पतिदेव विजय के ओर से और उनकर बेटा बेटी रोशनी कुशल के ओर से और पूरा दूली परिवार, पूरा बेनी प्रसाद परिवार के ओर से जन्मदिन के ढेरों शुभकामना।

हैप्पी बर्थडे। अभी और भी बाकी बा, ढेर फरमाइश आल बा और जन्मदिन के, थोड़ा घड़ी में वो सब फरमाइश भी पूरा करब जा। फिलहाल जो अगला गीत चली वो राधा कृष्णा के बारे में बा, कृष्ण उखाज के आवाज़ में। और ये गीत सुने चाहत हवन फौजी साख से उमा जी, आप राधा के सुभेला। और ये गीत के आप फरमाइश करत हवा ख़ास तौर पर अपन दुगो नातिन जे वाकवा से हवन आरोही और रिव्याजू गौपा से हवन अदाधिया। ये गीत आप सब के नाम जे राधा और कृष्णा के माने लजा, राधा और कृष्णा के चाहे लजा। और ये गीत सच में बहुत सुंदर गीत बा, चला संगे ये गीत के आनंद उठाए जा।

0: राधा नाचेला कृष्णा बजावे बांसुरिया। ई सुंदर गीत के बाद अगला जन गीत चली आप सब कोई के नाम जे ई बखत बीच सीमा में हवा जा और गाड़ी चलावत हवा जा। साथ में आपके चाहे ई बात के खास ख्याल रखे के कि जब आपके पुलिस रोकी त आपके जितना भी कागजात बा कागज पत्तर के साथ साथ आपके हाल चाल भी चाहिए ठीक रहे के, आपके नशा में नहीं चाहिए गाड़ी चलाए के, पी के नहीं चाहिए गाड़ी चलाए के, और फिटनेस और लाइसेंस के खास ख्याल रखा। कहे कि आजकल देखते हैं जहाँ हमने के सड़क पर ढेर दुर्घटना हुआ था, रोज़ रोज़ हमने के सुने के मिलता कि यहाँ पर ऐसा दुर्घटना होल, हुआ पर औसन एक्सीडेंट होल, तो इस सब से बचे खातिर आपके चाहे पूरा सावधानी बरते के। और रतन हरि के आवाज़ में ये गीत आप सब कोई के नाम जे ये बखत सफ़र में हवा जा और अपन सफ़र के आप लोग खूब आनंद उठावत हवा जा।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
5: अच्छा हुआ मिली वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
6: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
5: आपका नाम मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या?
6: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
5: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
6: जाइए यहाँ से, एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
5: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
7: कहता है बाबुल।
4: रविवार 7 जून को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की ये मूवी अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई बाबुल।
7: बाबुल तो दिल से दे रहा है।
4: संगीत

रात के 10 बजे में और 15 मिनट बाकी बा और अभी से 11 बजे तक हमने साथ रहब जा और आप बीच सीमा में हुई बा तो आपके पास पूरा समय बा अपन मंजिल तक पहुँचे के और अगला जन गीत चली नदी किनारे सुनार नदी किनारे सुनारवा एरिन दिखावे पूर्णिमा फोकेरा जी के आवाज़ में ये गीत सुने चाहत हवन शीला जी और सुरेन भी उनकर साथ हवन आप लोग अपन पूरा परिवार के नाम चाहे वो मॉरिशस में होए मॉरिशस से बाहर फ्रांस में होए या कहीं भी जहाँ जहाँ आप लोग के लयका लोग बा नाती लोग हवन सा और पूरा परिवार हवन सा वो सब कोई के नाम आप ये गीत चलावे की मांग करत हवा और ये गीत ख़ास तौर पर पूर्णिमा फोकेरा जी के नाम जे हमेशा फ़ोन करते रहलन बात करते रहलन और ये प्रोग्राम के आप जितना चाव से सुने ला जा उतना ही खुशी के साथ उत्साह के साथ वो भी सुने लन और जितना भी हमने के मॉरिशन भोजपुरी कलाकार हवन जा आप सब कोई के हमर ओर से नमस्ते और जितना कोई हमने के अभी सुनत हो वजह आपके ओर से भी सब कलाकार लोग के प्रणाम नमस्ते और ये रात हमेशा की तरह सुहावन रही ये रात हमेशा की तरह आप सब कोई के एगो बहुत अच्छा नींद सुते में मदद करी ऐसन उम्मीद के साथ ऐसन शुभकामना के साथ चला प्रोग्राम के अगला गीत के ओर बढ़ी जा

शारदा सिन्हा के आवाज में ई गीत के फरमाइश के करले होई आप समझ गल होई बा। शारदा सिन्हा के एगो बहुत बड़ा फैन हवन हमनी के ई भोजपुरी तरका के और आप हवा बुआशहरी के धनी जी। धनी जी ई आवाज बहुत पसंद करेलन और ई आवाज में जो अलग अलग गीत बा उ पसंद करेलन, चलावे के मांग करेलन। हमेशा हमने ई आवाज में एगो फिल्मी गाना चलाएला जा, मैंने प्यार किया फिल्म से, कहे तो से सजना तुम्हारी सजनिया। और आज धनी जी के इच्छा होल बा कि कोनो और गीत चली उनकर आवाज़ में, तो चला धनी जी, आशा करत है जा कि आपके जो मुराद बा वो पूरा हुआ था और आपके बहुत बहुत शुभकामना।

0: रात के 10:01 हो गल बा और जिन अगला गीत चली उ रंभा राम तोहल के आवाज़ में जुबेदा लो तो लेके जाए और ये गीत सुने चाहत हवन भाई अब्बू। भाई अब्बू हमेशा के तरह अपन पूरा परिवार के नाम ये गीत चलावे चाहत हवन और इमें हवन अफेज, अयाज, जयर, जहीरा, काला चोटी, उनकर दोस्त अपी और उनकर पत्नी और उनकर पूरा परिवार खातिर। और भाई अबू ई बखत जितना कोई ई प्रोग्राम सुनत हवजा आप सब कोई के नाम ई फरमाइश कर ले हवन और ख़ास तौर पर जे लोग काम करत हवन जा। अब भाई अबू के साथ साथ गौगोप के सुनीता जी सुनत हवन और वो अपन बहिन कोंगोमा के विमाला के नाम ई गीत के फरमाइश करत हवन। उधर रोजिल से हमने के सजीद सुनत हवन हमेशा की तरह और सजीद अपन जोन उनकर एगो साथी हवन, उनकर सहपाठी जेकर साथ उ छोटा से पढ़ले हवन सरोवर, सरोवर जे एगो छोकरी हवन। हमेशा हम सोचत रही सरोवर एगो कोनो लड़का के नाम होई, लेकिन नहीं, सरोवर एगो लड़की के नाम है जे कनाडा में स्थापित हवन। और सजीद के उनकर दोस्त हवन त आपके भी नाम ई गीत और ई बखत जे हमने के रंभा जी सुनत हुयन त रंभा जी ई गीत खास आपके नाम और जितना भी हमने के श्रोतागण हवन जा सुनत हवन जा आपके नमस्ते बोलत हवन जा।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2

0: 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: अरे औलाद नहीं है, फिर भी हम समझते हैं औलाद क्या होती है,
5: क्योंकि डरते हैं हम।
4: इस नेशन में इलेक्शन एक खेल है, 5 साल में 3-3 बार खेलना पड़ता है।
5: अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं होती ना मंजरी जी।
6: चुभे है क्यों ये जिंदगी।
3: शनिवार 6 जून को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म शूल 1999 की ये मूवी मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म

रात के 10:12 छोड़बा और जैसे थोड़ा आगे बोलत रही अभी फरमाइश जोन जन्मदिन से जुड़ल बा उ बाकी बा तो चला किशोर किमिया के आवाज़ में एगो सुंदर जन्मदिन के गीत सुनी जा और ये गीत सुने के इच्छा रखत हवन फ्लाक से माला दुर्गा बोलत हवन कि आज उनकर बड़ा बेटा के जन्मदिन बा और बड़ा बेटा के नाम बा रोशन विक्रम दुर्गा उनकर पत्नी के ओर से अरुणा उनकर माता पिता के ओर से उनकर छोटा भाई किरण के ओर से और किरण के जो दुगो बेटी हवन आंशी और दिव्यांशी उलोक के ओर से साथ में खुद रोशन के बेटी लोग के ओर से रक्षा और रक्षिता और किरण के पत्नी प्रीति के ओर से साथ में दुर्गा जी बोलत हवन कि उनकर दामाद प्रकाश और उनकर नाती युव के ओर से रोशन जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना और हमने के ओर से भी भोजपुरी तड़का के टीम पूरा एमबीसी टीम के ओर से दुर्गा जी आपके बेटा रोशन के जन्मदिन के ढेरों शुभकामना यही हमने के जोन आज के दिन हमने के जोन इच्छा बा हमने के जोन विश बा वही है कि आपके बेटा आपके परिवार के हमेशा खुश रखी आपके परिवार उन पर अपन पूरा खुशी निछावर करी और आपके परिवार हमेशा यही तरह मिलजुल के हर एगो खुशी के दिन मनाई बजा ऐसन शुभकामना के साथ उ सब व्यक्ति के एक बार फिर जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई जे लोग आज के दिन और आज से लेके आवत बीफे तक अपन जन्मदिन मनावत है वजह का है कि हमने के मुलाकात ई प्रोग्राम के अंतर्गत अब आवत बीफे होई तो हमार ओर से आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना हैप्पी बर्थडे।

0: और इस जन्मदिन के गीत के बाद जन अगला गीत चली इस गीत के मांग कर ले हवन ललिता जी और बिस्वानी दीपा के आवाज़ में गमठ कराइला ये गीत आप सुने चाहत हवा और अपन सब सखी सहेली अपन बहन लोग के नाम सुदेवी देवीना प्रभावती छोटी आपके मौसी शुक्लाल माला राम जावन हरीश भैया आत्माराम भैया सब कोई के नाम ललिता जी ये गीत करत हवन और ये गीत के बाद जो अगला गीत चली नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में वो गीत के फरमाइश कर ले हवन आत्माराम जी। आत्माराम जी बेलिया से हवन और आप ये जो गीत चली ये आप चलावे चाहत हवा अपन तीन गो दामाद के नाम तीन गो दामाद के साथ साथ अपन चार गो बहिन ललिता सुदेवी छोटी और प्रभावती के नाम। उधर सुदेवी जी वाकवा से भी गीत के फरमाइश करत हवन आत्माराम भैया ललिता खातिर पूरा जोन परिवार बा कुशल और रामरतन परिवार जे मालागा से हवन। तो चला आप सब कोई के फरमाइश पर ये सब गीत चली और सुदेवी जी विनोद शिवदत्त के आवाज़ में गीत सुने चाहत हवन। तो बिस्वानी दीपवा नीरज गुप्त मधु और विनोद शिवदत्त के आवाज़ में एक के बाद एक आप के जोन फरमाइश बा वो चले होला बा।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
5: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: RM3 Radio. Radio.
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.

भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आप सुना था ये बखत रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर, और ये बखत 10:43 होलबा, मतलब कि 11 बजे में लगभग 15 मिनट कमती बा। हमने के साथ देवा था, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने के मुलाकात फिर से हुई काल फजर के हमारी धरोहर में, और नहीं तो भोजपुरी तड़का में फिर मिलब जा पूरा एक

सप्ताह के बाद आवत बिफे के। तब तक अपन ख्याल रखिया और MBC रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के साथ देते रहिया। हमने के फिर से बहुत जल्दी भेंट होई। शुभ रात्रि, अच्छा नींद सुता, अच्छा संकल्प करा, संकल्प से ही सिद्धि होवेला। और काल फजीर आप सब कोई के एगो नया मौका रही, नया दिन रही, नया अवसर रही, ऐसा शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। प्रोग्राम के सुनते रहिए, अभी और 15 मिनट बाकी बा, एक बाद भी सुंदर से सुंदर बॉलीवुड गीत चली। हमके आज्ञा द, धन्यवाद, नमस्ते।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं, बुरे लोग हैं, हा?
2: और इतनी सी बात के लिए हमारी बहन से शादी नहीं करेगा?
3: है कोई घर में बहन, बेटी, भाई, कोई भी शादी के लायक
2: है ना? लड़की संजना बहन।
4: और हमारे से ज्यादा शरीफ खानदान आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा।
2: प्लीज वेलकम।
0: रविवार 7 जून को NBC 3 पर दिन के 12 बजे स्पेशल फादर्स डे हिंदी फीचर फिल्म वेलकम 2007 की ये मूवी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म वेलकम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
2: माय दिस इज रेडियो मॉरिशस।
3: स्वागत
4: है आप सभी का।
0: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
5: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। जी हाँ, फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है गणेशा, आ जाते हैं खूबसूरत मीठे मीठे पुराने गीतों के साथ, जो पुराने बॉलीवुड के गीतों के खजाने से निकाल के लाए हैं। तो इस एक घंटे के सफ़र में कुछ ऐसे गिने चुने नगमे हम पेश करने वाले हैं जो सीधे सिर्फ आपके दिल तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और हमारा साथ जे सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

0: हमेशा याद रखना, जब भी पुराने बॉलीवुड गीत बजते हैं तो दिल अपने आप मुस्कुराने लग जाते हैं, और इसी मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, साथ रहिए और गीतों का लुफ उठाइए, यादों का सफर शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच में।
1: मर कर भी तुमको

आज हम सजाएंगे गीतों की एक ऐसी महफिल जहां हर सुर एक नई याद जगाएगा। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल का आनंद लीजिए। पुरानी कैसेट, पुराना रेडियो और पुराने गीत, याद आ गया? हाँ जी, याद आ गया ना वो जमाना। तो चलिए फिर से जीते हैं वो लम्हे सुनहरे पल के साथ। बॉलीवुड के अमर गीत और उनकी मिठास लेकर हम हाजिर हैं। ये है सुनहरे पल, जहां हर गीत दिल से जुड़ जाती है।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालिए और खो जाइए उन गीतों में जो हमेशा दिल के करीब रहे हैं। बिल्कुल, स्वागत तो हमने आपका कर लिया। आपके मनपसंद गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठंडी ठंडी हवा का झोंका चल रहा है और आपके मनपसंद गीत ऑन रेडियो मॉरिशस। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, और क्या चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप बस इन खूबसूरत गीतों में खो जाइए और हमारा साथ यूं ही देते रहिए।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती, बिल्कुल कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती हैं मेरी जान। आज उन्हीं आवाज़ों और गीतों के साथ हम लेकर आए हैं यादों भरी एक खूबसूरत शाम। गीत जो कभी आपकी मोहब्बत का हिस्सा थे, गीत जो कभी आपके सफ़र के साथी थे, आज फिर सुनेंगे उन्हें, आपके मनपसंद गीत सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस पर शुरू तो हो चुका है यादों का सिलसिला। हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास। ये है आपका अपना सुनहरे पल किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल जी, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम आ जाते हैं। तो बस तैयार रहिए हमारा साथ देने के लिए एक सुहाने संगीतमय सफर के लिए।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। इन खूबसूरत गानों के जरिए जब आप अपने उन खूबसूरत यादों को याद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, आपको पता है हमें कितनी खुशी होती है। हाँ जी दोस्त, वाकई में जब भी हम आ जाते हैं, ये यादों का खजाना आपका खुल जाता है तो हमारे दिल को खुशी मिलती है, क्योंकि यादें कुछ ऐसे होते हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे, जो हमेशा आप अपने दिल के किसी कोने में उसको सजा के और दबा के भी रखते हैं। तो चलिए उन्हीं यादों के नाम ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: तो चले जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। बिल्कुल जी, वादा तो हम करते हैं कि फिर वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। जी हाँ, ऑन रेडियो मॉरिशस। शुभ रात्रि, शब बखैर और अपना ख्याल रखना।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

గట్టిగా వెతికాను.

खान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

एक साथ धड़के हैं दो दिल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।